सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 29, तदनुसार 19 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: मधुबनी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य

0: प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे गर्मी में फूलगोभी की खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राजेश कुमार।

किसान भाइयों जोहार। खेती की बातें के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे गर्मी के मौसम में फूल गोभी की खेती, इसी विषय पर। गर्मियों में फूल गोभी 60 से 70 दिनों में तैयार होकर भारी मुनाफा देती है। अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखा है तो मई में इसकी रोपाई कर सकते हैं। यदि जून जुलाई में लगा रहे हैं तो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें। उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। खेत तैयार करते समय गोबर की खाद जरूर डालें। गर्मियों में लगातार नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए हल्की और लगातार सिंचाई करते रहें। फूलों को तेज धूप से बचाने के लिए पत्तियों को तोड़कर फूल के ऊपर ढक दें। उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। गर्मियों में कीटों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए सलाह अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग करें। गर्मी में फूलगोभी बाजार में 55 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होता है। गर्मी में गोभी के लिए कथकी, पूसी या कुंवारी जैसी गर्मी सहन करने वाली किस्में ही चुनें। वैसे तो गर्मी में गोभी की खेती बहुत ही रिस्क की होती है, ऐसे में इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी जुताई करें और फिर उस खेत की नमी और उर्वरा शक्ति की मजबूती को देखते हुए खाद, पानी और वर्मी मिलाकर पुनः जुताई कर तैयार करें। नर्सरी में गिराए हुए गोभी के छोटे छोटे पौधों को शाम में लगाने की कोशिश करें।

0: गर्मी के सीजन में फूलगोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार करना बड़ी बात है। कहते हैं कि अगर आपने नर्सरी तैयार कर ली तो आधी खेती आपकी हो गई। नर्सरी लगाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक अटैक फंगस का होता है, वो भी नर्सरी लगाते समय। जब बीज जमेगा और एकदम से उड़ जाएगा, मतलब फंगस का बुरा अटैक होता है। इसलिए नर्सरी लगाने से पहले बीज उपचार बहुत जरूरी है। किसी भी बेहतर फंगिसाइड से आप बीजोपचार कर लें। जो उसकी नर्सरी है, कोशिश करें कि उसे किसी पॉलीहाउस में डालें, जिससे ओवर टेम्परेचर से, सनलाइट से छोटे पौधे बच सकें। इसको लगाते समय कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 22x18 इंच की दूरी पर पौधे को लगाएं। फिर कुछ दिनों बाद इसमें घास को खत्म करने के लिए कमौनी करते रहें। फिर समय समय पर खाद, पानी और कीटनाशी का छिड़काव करें। फूलगोभी की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा देकर जाती है। इसकी खेती में लागत के मुकाबले कमाई अधिक होती है। अभी तक यह सिर्फ एक सीजन में पैदा होती थी, यानी कि ठंड के मौसम में, लेकिन अब गर्मी में भी पैदा होने वाली गोभी की किस्म तैयार कर दी गई है। इसकी खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते फूलों की गुणवत्ता और आकार सही हो, इसमें कीड़े न लगे हो। इसकी खेती के लिए उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके किसान अच्छी आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको गर्मियों में फूल गोभी की खेती करनी है तो आपको बीज को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप गर्मी में फूल गोभी लगा रहे हैं तो गर्मी वाले बीज ही लगाने होंगे। इसके लिए तो अब कई कंपनियां कई वैरायटी के बीज बना रही है, ऑप्शन बहुत है। बस किसानों को इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सीजन में लगाएं उसी सीजन के बीज लें। कोशिश करें गर्मी में लगा रहे तो गर्मी वाली ही किस्म लें। जुताई से पहले खेत में प्रति 4 कट्ठे यानी 0.1 एकड़ जमीन पर 1 ट्रॉली गोबर या जैविक खाद डालें। इसके बाद जुताई करें और जुताई के बाद फसल की बुआई कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच होना चाहिए। बुआई के बाद हर 2 से 3 दिन बाद फसल की सिंचाई करें। सिंचाई इसलिए जरूरी है ताकि तेज गर्मी का प्रभाव पड़ने से फूल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसकी खेती पंक्ति में की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तेज गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि फसल की गुणवत्ता अच्छी हो। गर्मी में यदि आप फूलगोभी लगा रहे हैं तो यूरिया खाद का इस्तेमाल करने से बचें। इस तरह किसान भाइयों, यदि आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो गर्मी के इस मौसम में भी फूलगोभी की खेती कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं।

मन्ना डे के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री

मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप आनंद ले सकते हैं सुगम संगीत में गजलों का। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरांजलि स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 8:45 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा और सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 9:05 पर श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरंजना में आज के दिन एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10

प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। और दोपहर के 2 बजे आप सुन सकते हैं मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 3:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। 3:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनवाया जाएगा। 4:02 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। और 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। 5:30 पर कार्यक्रम कल कारखाने की प्रस्तुति होगी। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं झारखंड के लोकगीत का। 6:30 का हमारा समय होता है कृषि जगत का। संध्या 7 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और यहीं से प्रसारित किया जाता है 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर बांग्ला कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और 7:45 पर आज के दिन आप सुनेंगे कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे न्यूज एट नाइट और स्पॉट लाइट। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं, आप आनंद लेंगे गजलों का। फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फनकार जगजीत सिंह को। इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और

0: प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे अंगिका गीत नेहा सिंह और साथियों से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नेहा सिंह और साथियों से अंगिका गीत। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजली। कार्यक्रम सुरांजली में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान रूपांकर से।

रूपांकर से भी आप सुन रहे थे आधुनिक गान। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सूरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के संक में आप सुनेंगे भेंट वार्ता सिकल सेल एनेमिया विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर स्तुति केडिया और भेंट करता है राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये होता क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका उपचार हो सकता है, इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर स्तुति केडिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। सिकल सेल एनीमिया वास्तव में होता क्या है?
1: सिकल सेल एनीमिया एक तरीके का रक्त दोष है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो जन्मजात होती है। इसमें हमारे हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, उससे हीमोग्लोबिन अलग बनता है। हमारा हीमोग्लोबिन में दो प्रकार की चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। ये बीटा चेन जो बनना, ये बंद हो जाती है और इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हीमोग्लोबिन एस बनता है, जो सिकल सेल एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। ये जो सिकल सेल होते हैं, ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये हीमोग्लोबिन उनमें पाया जाता है। ये सिकल सेल होने के कारण इनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। जो रक्त कोशिकाएं गोल होनी चाहिए वो अर्धचंद्र की तरह या हसुआ शेप की हो जाती है। उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो हमारी रक्त वाहिनियों में तैरती हैं या जाती हैं तो वो ज्यादा टूटने लगती हैं। ज्यादा टूटने की वजह से खून की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं।
0: सिकल सेल एनीमिया के जो शिकार हैं उनमें क्या लक्षण उभर कर आते हैं?
1: सिकल सेल एनीमिया के

0: मरीजों का हीमोग्लोबिन ज्यादातर 6 से 8 ग्राम के बीच में ही रहता है।
1: अच्छा।
0: नॉर्मली ये लोग अपना काम सही से कर रहे होते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे कोई बीमारी, इन्फेक्शन, कोई तनाव या ऊंचाई पर जाना जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या सडनली एकदम चेंज हमारा टेम्परेचर में आ जाता है, या पानी की कमी होना शरीर में। इन सभी कंडीशन में हमारे जो सिकल सेल बनते हैं शरीर में वो ज्यादा बनने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि सिकल सेल आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपकने लगते हैं और जिसकी वजह से वो नसों को ब्लॉक कर देते हैं और खून के दौरान को बंद कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: इन कंडीशंस में शरीर में कुछ भागों में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और सबसे पहले उंगलियों में होता है क्योंकि यहाँ की नसें बहुत पतली होती हैं। पैरों में अल्सर होना, कुछ कुछ हिस्सों में मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि हमारे गुर्दे में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम होने लगती है, अचानक होना, अचानक बलगम आ जाना और सांस लेने में दिक्कत होना या छाती में दर्द हो जाना, जिसको हम लोग अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ये जन्मजात प्रॉब्लम है, बट इसका पता 6 महीने के बाद पता चलता है। 6 महीने से पहले बच्चा का हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन F होता है, जिसमें बीटा चेन नहीं बनती है, पर जब 6 महीने के बाद बीटा चेन का बनना शुरू होता है और वो चेन जब नहीं बन पाती है तब ये चीज उभर कर आती है। जनरली बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार उनके किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से वे बहुत पेशाब करते हैं या रात में बिस्तर गीला करते हैं, और अगर माँ बाप में कहीं ना कहीं वो चीज बीमारी है तो बच्चे में आने की संभावना
1: जेनेटिक
0: है। ये जेनेटिक है, ये दोनों माँ बाप से आती है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो सिकल सेल एनीमिया के शिकार है?
0: सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को हम यही बोलेंगे कि ये कोई घबराने की प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ लक्षणों को पहचानिए। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है उस समय के लक्षणों को, जैसे दर्द होना, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, अल्सर होना, खून का अचानक कम हो जाना, इन सब लक्षणों को पहचान के अस्पतालों में जाएं। अस्पतालों में खून चढ़ाने की आजकल ब्लड बैंक की सुविधा सब जगह उपलब्ध है। आप जाएं, अपने एक फिजिशियन को दिखाइए, निजी डॉक्टर को दिखाकर आप तुरंत एक उपचार चालू करिए। एक नॉर्मल डेली लाइफ आप अच्छे से जी सकते हैं अगर आप इन लक्षणों को जल्दी पहचान के जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त करे थे सिकल सेल एनेमिया विषय पर डॉक्टर स्तुति केड़िया से। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और इसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और

0: न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरण

0: नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू

0: की नई व्यवस्था, स्टेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है, नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य। ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना। किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण। कहा, मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त। आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
1: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है। और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
0: पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पॉल ने कहा कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। उन्होंने बताया कि IOCL, BPCL और HPCL की आपूर्ति श्रृंखला टर्मिनल, डेपो और रिटेल आउटलेट स्तर पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा ईंधन भंडार की लगातार निगरानी की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य है। तेल कंपनियों ने लोगों से घबराकर खरीदारी नहीं करने और ईंधन उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद रांची की मेयर रोशनी खलको ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने को कहा है। साथ ही उन्होंने देश हित में अभी सोने की खरीदारी नहीं करने की भी अपील की है।
2: मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपने घर में जो हम लोग बचत करेंगे वो अपने लिए होगा। उसी तरह से देश के लिए जो हम बचत करेंगे वो देश के लिए होगा, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो, चाहे वो आप सोना के रूप में हो। आज जो बचत होगी वो हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है।
0: राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की।
3: जहाँ भी मई जून में बारिश हो, तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क धंसने और पत्थरों के टूटने की घटनाएं विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई की उजागर करती है। उन्होंने साहिबगंज उपायुक्त से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक नए समाचार पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है और मीडिया समाज की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है तथा मीडिया को सत्य, नैतिकता और जनहित के मूल्यों के साथ कार्य करना चाहिए।
4: एक जुड़ाव जो पत्रकारिता के साथ, जो अखबार के साथ होता है, बहुत ही इमोशनल भी होता है, बहुत बदलाव का एक जरिया भी होता है, एक क्रांति का भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक कह लें, इसकी भी भूमिका में ये रहता है।
0: इस समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मुख्य संपादक अमरीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। झारखंड कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्र सरकार में सीमा सुरक्षा बल BSF में DIG के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 21 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी रांची के थरपकना स्थित यूनियन क्लब कराटे सेंटर में शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण सह बेल्ट ग्रेडेशन शिविर का आयोजन किया गया। बेल्ट ग्रेडेशन में सफल प्रतिभागियों को बेल्ट प्रदान किया गया, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि स्वेतांग सेन और विशिष्ट अतिथि राम चटर्जी ने मेडल देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में नियुक्तियों का दौर, देश में पर्चा लीक। प्रभात खबर ने झारखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है 59 केस के रैयतों को 9 करोड़ से ज्यादा मिलेगा मुआवजा। दैनिक जागरण ने खूंटी में किशोर किशोरी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 22 से 26 मई के बीच मॉनसून के केरल पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति सामान्य, ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना, किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण, कहा मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के IPS अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में DIG के पद पर किया गया नियुक्त, आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर, गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका।

आपने सुना चुपके चुपके फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे एसडी बर्मन।

प्रेम गीत के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस होकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार।

तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 98.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11:00 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12:00 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
6: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई

0: डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर और अब हम हाजिर हैं सुरंजना लेकर। श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे मनोज मुंतशिर की रचनाएं।

आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का ये गीत विशाल मिश्रा की आवाज़ में, संगीत निर्देशन भी विशाल मिश्रा का था। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। पलक मुछल की ये आवाज़ है और संगीत अमाल मल्लिक का है, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना में मनोज मुंतशिर की रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल को फिल्म काबिल में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया था। अब आइए सुनवाते हैं रेड फिल्म का ये गाना। आवाज़ राहत फतह अली खान की है, संगीत निर्देशन तनिष्क बागची का है और इस गाने को भी रचा है मनोज

फिल्म तमाशा का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। संगीत निर्देशन था एआर रहमान का। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मनोज मुंताशिर की रचनाएं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग जौनपुरी पर आधारित ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से ख्याल गायन, राग था जौनपुरी। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर और सैम ऑल्टमैन तथा ओपनएआई ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख भी किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट को के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आज रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे।

0: श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा समझौता जल्द ही हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। अमेरिका 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के G20 के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल के मुख्य G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अमेरिका सरकार ने क्यूबा के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें वहां के संचार मंत्री, कई सैन्य नेता और मुख्य खुफिया एजेंसी शामिल हैं। ये कदम क्यूबा के कम्युनिस्ट नेताओं पर ट्रंप प्रशासन द्वारा दबाव बढ़ाने का एक हिस्सा है। ये कार्रवाई क्यूबा के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वेनेजुएला से आने वाले अधिकांश तेल खेपों पर प्रतिबंध के प्रयास भी शामिल हैं। ये कदम जनवरी में वेनेजुएला के नेता को पकड़ने के लिए अमरीकी छापे के बाद उठाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से चीन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। श्री पुतिन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। रूस ने कहा है कि पुतिन और शी चिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन का ये दौरा 2001 में हुए चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई के खिलाफ एलन मस्क के दावे को खारिज कर दिया है। मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपनएआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। ओकलैंड की संघीय अदालत ने माना कि मस्क ने ये मुकदमा करने में देर कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्क के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपनएआई इंसानियत की भलाई के लिए काम करने के अपने शुरुआती वादे से मुकर गई है। 28 अप्रैल को शुरू हुए इस मुकदमे में मस्क ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने पुराने आदर्शों को छोड़कर सिर्फ मुनाफा कमाने और अपने निवेशकों को अमीर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इटुरी और उत्तरी किवू प्रांतों में 118 और लगभग 30 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी एक मौत और एक संदिग्ध मामले की पुष्टि हुई है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने एक आदेश में 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का

आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिन की चीन यात्रा पर हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
4: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: हेलो डॉक्टर,
8: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
7: हेलो डॉक्टर,
8: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
7: हेलो डॉक्टर,
9: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म देखा प्यार तुम्हारा किस गाने से। आवाजें सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की हैं, शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वारिस। आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में। वर्मा मल्लिक ने इस गीत को रचा है, संगीत उत्तम जगदीश का है।

तमन्ना, आपने सुना इस फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज़ में? बोल इंदिवर की थी और धुन अनु मलिक का था।

शादी में ज़रूर आना, आपने सुना है इस फिल्म का गाना आशित त्रिपाठी की आवाज़ में। रचनाकार थे शकील आज़मी और संगीत निर्देशन था राशिद खान का। अब आइए सुनवाते हैं गदर 2 फिल्म से ये गीत नीति मोहन, विशाल मिश्रा और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को रचा है सईद कादरी ने और संगीत निर्देशन मिथुन का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनवाते हैं आशीष कौर का गाया फिल्म बैड बॉय का ये गीत। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

0: आशीष कौर के गाए फिल्म बैड बॉय के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम। दिन के 11:05 हुए हैं अभी। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, दोस्तों हर रोज हम हमारे हर कार्यक्रम में रोचकता, विविधता और मनोरंजन का खास ख्याल रखते हैं और इसलिए हमारा हर कार्यक्रम जुड़ता है आपसे एक अलग और अनोखे अंदाज में। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम नमस्कार

दोस्तों, हर साल 19 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मई किरण दिवस यानी नेशनल मे रे डे। ये एक अनौपचारिक मज़ेदार दिन है जो लोगों को वसंत के खुशनुमा मौसम का आनंद लेने और धूप में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। मई के इस समय में सर्दियां ख़त्म हो चुकी होती हैं और गर्मियां शुरू होने वाली होती हैं। ये दिन हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ से बाहर निकलने और धूप से विटामिन डी प्राप्त करने का अवसर देता है। आप इस दिन को बहुत तरीक़ों से मना सकते हैं, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, विटामिन डी लें, धूप में कुछ समय बिताना आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बना सकता है, ताज़ी हवा में सांस लें और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करें, कुल मिलाकर प्रकृति का आनंद लें। 19 मई को अपने दफ्तरों और घरों से बाहर निकलें और सूर्य की किरणों का आनंद लें, क्योंकि ये मई किरण दिवस है। इस दिन की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन ये दिन लोगों को धूप में कुछ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक कहावत है, अप्रैल की बारिश मई में फूल खिलाती है, जो ऋतुओं के प्राकृतिक परिवर्तन और वसंत की सुहावनी बारिश के बारे में बताती है। हर साल ये परिवर्तन वसंत ऋतु की शुरुआत में ताजगी भरी बारिश लेकर आता है और फिर मई की सुखद गर्मी और फूलों की मनमोहक खुशबू खिल उठती है। गर्मियों के मौसम के करीब आने पर बाहर का आनंद लेने और सुहावने दिनों का लुत्फ उठाने के कई तरीके हैं, चाहे आप पार्क में हों, छत में हों या अपने घर के पीछे के आंगन में। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने का कोई ना कोई तरीका आज के दिन ज़रूर ढूंढ लें। अगर मौसम साथ नहीं दे रहा है तो मई में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। मई किरण दिवस का इस्तेमाल बाहर घूमने जाने का प्लान बनाने के लिए किया जा सकता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में मई का महीना वसंत ऋतु का अंतिम महीना होता है। इसी महीने से तापमान बढ़ने लगता है और चारों ओर गर्मी के आगमन की आहट दिखाई देने लगती है। दुकानों में गर्मियों के कपड़े, कृषि उत्पाद, प्रकृति में गर्मियों के फूल और पौधे खिलने के लिए तैयार होते हैं और हमारे स्कूलों में छात्र आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसलिए गर्मियां बढ़ने से पहले धूप का आनंद लेने और धूप सेकने का ये साल का सबसे अच्छा समय होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मई पतझड़ का आखिरी महीना होता है। यदि आप भूमध्य रेखा के नीचे रहते हैं तो तापमान गिरने से पहले धूप में

उदित नारायण और अलका याग्निक और प्रशांत समद्दार की आवाज़ों में फिजा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था नू मलिक ने और गीत लिखा था गुलजार ने।

और श्रोताओं, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पारिवारिक चिकित्सकों की अनिवार्यता को मान्यता देता है ये दिन। ये दिन हमारे स्वास्थ्य के प्रति उनके समर्पण और योगदान की सराहना करने का दिन है। इस दिन को मनाना पारिवारिक डॉक्टरों के समर्पण और व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण में उनके योगदान की सराहना करने का एक अवसर भी है। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस की स्थापना वर्ष 2010 में विश्व परिवार चिकित्सक संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवा में पारिवारिक चिकित्सकों के महत्व को सम्मानित करने के लिए की गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक डॉक्टरों और व्यापक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को पहचानना और उनकी सराहना करना है। हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में पारिवारिक डॉक्टरों के महत्व को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट विषय भी चुना जाता है। पारिवारिक चिकित्सक अपने मरीजों के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं, जो मरीजों के चिकित्सा इतिहास

जीवन शैली और सामाजिक परिस्थितियों की समझ के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। निवारक देखभाल और बीमारियों का शीघ्र पता लगाना उनकी प्राथमिकता होती है। पारिवारिक चिकित्सक मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए केंद्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं और सर्वोत्तम संभव देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सहयोग करते हैं। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में पारिवारिक चिकित्सकों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस पर कई बेहतरीन गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जैसे चिकित्सा सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जो काफ़ी जानकारीपूर्ण होते हैं, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते हैं, निवारक स्वास्थ्य देखभाल अभियान चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण और रोग निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्कृष्ट पारिवारिक डॉक्टरों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। आज के दिन सामुदायिक भावना और साझा स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग स्वास्थ्य विषयों पर शैक्षिक सत्र आयोजित किए जाते हैं। पारिवारिक चिकित्सा के बारे में जानकारी पूर्ण सामग्री बनाए जाते हैं, लेखों, वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें साझा किया जाता है, जिससे इनके महत्व के बारे में ज्ञान का प्रसार हो सके। पारिवारिक चिकित्सक प्राथमिक देखभाल, निवारक सेवाएं और निरंतर देखभाल प्रदान करके वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अलग अलग बीमारियों का निदान और उपचार करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। उनका समग्र दृष्टिकोण समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कम करता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लागत प्रभावी बनती है। पारिवारिक चिकित्सक श्वसन संक्रमण, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी क्रॉनिक बीमारियों, मामूली चोटों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, नियमित जांच, टीकाकरण और निवारक देखभाल सहित कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करते हैं। वे व्यक्तियों और परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें देखभाल की निरंतरता और समग्र स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। जी हाँ, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस के लिए अक्सर विशिष्ट विषय और गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। विषय हर साल अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गतिविधियों में जागरूकता अभियान, चिकित्सा सेमिनार, सामुदायिक संपर्क और स्वास्थ्य सेवा में पारिवारिक चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करना शामिल है। विश्व परिवार चिकित्सक संगठन ने घोषणा की है कि 19 मई 2026 को मनाए जाने वाले विश्व परिवार चिकित्सक दिवस का विषय डिजिटल दुनिया में करुणापूर्ण देखभाल

फिर मिलेंगे। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज़ में। प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत था, संगीत बद किया था शंकर एहसान लॉय ने।

साल का 139वां दिन यानी 19 मई इतिहास में एक खास वजह से दर्ज है। कई घटनाओं का गवाह रहा ये दिन। तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने के विकास का दिन भी है। आज ही के दिन ज्यां पियरे क्रिस्टीन ने 1743 में सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया था। 19 मई के दिन इतिहास में दर्ज दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें तो 19 मई 1904 को भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ। सन 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। इतिहास में उनका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर दर्ज है। 1913 में 19 मई को नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ जो देश के छठे राष्ट्रपति बने। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ। ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डेटसन वॉट ने राडार बनाया आज ही के दिन सन 1936 में, और ये प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई। सन 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहू विशाखापट्टनम में शुरू हुआ 19 मई को। 1979 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई को निधन हुआ। भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का निधन वर्ष 2008 में आज ही के दिन हुआ।

साथियों, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा की आज पुण्यतिथि है। भारतीय उद्योग जगत में भीष्म पितामह के तौर पर पहचाने जाने वाले जमशेद जी ने अपने जीवन काल में भारत को नई पहचान देने वाले कई बड़े काम किए। टाटा ग्रुप की आज पूरी दुनिया में धाक है। फिर बात चाहे घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक की हो या फिर हवाई जहाज में यात्रा करने की, टाटा का नाम हर तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस समूह की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमशेद जी का पहला कारोबार क्या था? जी हाँ, उन्होंने कई तरह के कारोबारों में हाथ आजमाया था। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। आज ही के दिन 19 मई 1904 को जर्मनी में उनका निधन हुआ। जमशेद जी टाटा पारसी परिवार से थे, जो लंबे समय से पुजारी का काम किया करता था, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। दरअसल जमशेद जी के पिता नसरवान जी टाटा अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया था। जमशेद जी टाटा ने 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई में हाथ बटाना शुरू किया उनका, और वहीं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी पूरी की। ग्रेजुएट होने के करीब 10 साल बाद सन 1868 में उन्होंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया था। जमशेद जी टाटा ने उस समय मात्र 21,000 रुपये के निवेश से सबसे पहले एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने इंग्लैंड की राह पकड़ी और वहां से कपड़ा व्यापार की बारीकी समझकर वापस भारत लौट आए। इसके बाद जमशेद जी ने 1869 में कपड़े के बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने बम्बई के इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को खरीदा और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। इस मिल को उन्होंने कॉटन मिल में बदला और 2 साल बाद ही एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इसे एक स्थानीय व्यापारी को बेच दिया। ये वो समय था जबकि मुंबई तब का बम्बई कपड़ा मिलों की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी, लेकिन जमशेद जी टाटा ने अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए दूरदर्शी सोच अपनाई। उन्होंने 1.5 लाख रुपए के निवेश करके 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। नागपुर को चुनने के पीछे वजह इसका कपास उत्पादक क्षेत्र के पास होना, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच और पानी ईंधन की अच्छी आपूर्ति थी। उन्होंने कपड़े के सस्ते एक्सपोर्ट के लिए 1873 में एक शिपिंग कंपनी भी शुरू की और इसके लिए लंदन से एनी बैरो नाम के एक जहाज को 1,050 पाउंड प्रति महीने के किराए पर लिया था। लेकिन टाटा लाइन के नाम से शुरू की गई ये कंपनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। जमशेद जी टाटा ने देश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। 1893 में वे जापान की यात्रा पर गए और वहाँ वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन के प्रोसेस को समझा। इसके बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने तब के मैसूर स्टेट में इस कारोबार को फैलाया। इसके लिए उन्होंने वहाँ आवश्यक जमीन खरीदी और सब्सिडाइज तरीके से रेशम कीट पालन शुरू किया। यही नहीं, भारत की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी इसी ग्रुप ने की थी, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। समूह की टाटा मोटर्स पहले रेलवे इंजन बनाया करती थी और देश की पहली एसयूवी टाटा सियेरा भी इसी ने बनाई थी। जमशेद जी टाटा के इन कामों के चलते ही हुरुन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में उन्हें बीते 100 साल में सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति बताया था। ऐसे महान उद्योगपति को हम उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए नमन करते हैं।

जमशेदपुर का नाम टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर पड़ा है। फारसी भाषा में पुर का अर्थ होता है शहर, मतलब हुआ जमशेद का शहर। और हमें गर्व है कि हम जमशेद के शहर यानी जमशेदपुर के वासी हैं। बहरहाल अभी हमने आपको सैम बहादुर फिल्म का गाना सुनवाया, आवाज़ शंकर महादेवन की थी, गुलजार का लिखा हुआ गीत था, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी श्रीति के साथ। और अंतराल में जाने से पहले हम बातें कर रहे थे 19 मई के नाम पर इतिहास में दर्ज घटनाओं की, और आज के दिन जन्मे और इस दुनिया को अलविदा कहने वाले महान हस्तियों की। 19 मई 1934 कसौली हिमाचल प्रदेश भारत में जन्मे ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड, जो अंग्रेजी में अपने व्यापक लेखन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें द रूम ऑन द रूफ और अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स शामिल हैं। 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने लगभग 500 लघु कथाएं, लेख, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। उनका लेखन अक्सर पहाड़ों, विशेष रूप से हिमालय में जीवन पर केंद्रित होता है, और प्रकृति, बचपन, प्रेम, विरह और रोजमर्रा की जिंदगी जैसे विषयों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने बच्चों के लिए भी व्यापक रूप से लिखा है और उनकी कहानियां स्पष्ट और सरल भाषा में रची गई हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म ब्रिटिश मूल के ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड और उनकी पत्नी एडिथ डोरोथी के घर हुआ था, जो संभवतः एंग्लो इंडियन मूल की थी। उन्होंने अपने शुरुआती साल मुख्य रूप से जामनगर में बिताए, जो वर्तमान में गुजरात में है, जहाँ उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित एक स्कूल में पढ़ाई की और देहरादून में भी रहे। लगभग 8 साल की उम्र में उनके माता पिता के अलग होने के बाद रस्किन बॉन्ड अपने पिता के साथ रहने के लिए दिल्ली चले गए, जो रॉयल एयरफोर्स में सेवारत थे। दोनों ने अपना दिन दिल्ली घूमने, डाक टिकटें इकट्ठा करने, फिल्में देखने और दूसरी कई गतिविधियों का आनंद लेने में बिताया। कुछ समय बाद रस्किन बॉन्ड को शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। 1944 में ऑब्रे बॉन्ड का कलकत्ता में निधन हो गया। रस्किन बॉन्ड ने अपने पिता के साथ बिताए पलों को अपनी पुस्तक लुकिंग फॉर द रेनबो माई ईयर्स विद डैडी में संकलित किया है। अपने पिता की मृत्यु के बाद बॉन्ड का पालन पोषण उनकी माँ, सौतेले पिता और दूसरे रिश्तेदारों ने किया। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से स्नातक होने के बाद वे ब्रिटेन चले गए और लगभग 4 वर्षों तक चैनल द्वीप समूह और लंदन में रहे। हालांकि उन्हें भारत लौटने की तीव्र इच्छा थी और वे 1955 में वापस लौट आए और यहीं भारत में बस गए। कुछ भी महत्वहीन नहीं है, जीवन के जटिल जाल में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, ये लाइन्स हैं रस्किन बॉन्ड की, जैसा कि लेखक ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है। लेखक के जीवन के दृश्य एक संस्मरण और यहाँ तक कि साहित्यिक संपादक डायना एथिल ने 1964 में बॉन्ड को लिखे एक पत्र में भी कहा था कि बॉन्ड की अधिकांश प्रेरणा उनके अपने अनुभवों से आई है। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ, जो 1956 में लिखा था उन्होंने, जो उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में रहते हुए लिखी थी। टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड अदर स्टोरीज 1989 में आई थी ये बुक, और डायरी प्रविष्टियों के रूप में मिस्टर ऑलिवर की डायरी 2010 में, और उपन्यास भी उन्होंने लिखे थे। उन्होंने अलौकिक कहानियों का लेखन और संपादन भी किया, जैसे कि संग्रह अ सीजन ऑफ घोस्ट और घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज 2002 में लिखी, लाइफ एट माई ओन पेस 1986 में, द लैम्प इज लिट लिव्स फ्रॉम अ जर्नल 1998 में, फनी साइड अप 2006 में, और लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी 2017 में। बॉन्ड के गैर काल्पनिक लेखन में से के कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने अलौकिक कहानियों का लेखन और संपादन भी किया। बॉन्ड की कई रचनाओं को टेलीविजन और फिल्मों के लिए रूपांतरित किया गया है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित 1979 की बॉलीवुड हिंदी भाषा फिल्म जुनून बॉन्ड के ऐतिहासिक उपन्यास अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित है। भारतीय निर्देशक विशाल भारद्वाज ने बॉन्ड की लघु उपन्यास को
रूपांतरित किया। भारद्वाज ने वर्ष 2005 में द ब्लू अम्ब्रेला 1974 को इसी नाम से फिल्म में रूपांतरित किया। बाद में उन्होंने लघु कहानी सुजानाज सेवन हस्बेंड्स पर आधारित फिल्म सात खून माफ बनाई, जो वर्ष 2011 में आई थी, जिसमें बॉन्ड ने एक कैमियो भूमिका निभाई। भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने 1990 के दशक के मध्य और 2010 के दशक में एक था रस्टी नामक एक टेलीविजन श्रृंखला के कुछ सीजन प्रसारित किए, जिसमें ब्रॉन्ड की लोकप्रिय रस्टी कहानियों पर आधारित कहानियां दिखाई गईं। 2019 की टेलीविजन श्रृंखला परछाई ने बॉन्ड की कई हॉरर कहानियों को पर्दे पर उतारा था। आइए उन्हीं के उपन्यास पर आधारित सात खून माफ फिल्म का ये गाना सुनें।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक और विद्वान थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य की गहरी समझ रखने वाले द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को एक नया और व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा गांव में आपका जन्म हुआ। उन्होंने शांति निकेतन में लंबा समय बिताया, जहां वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व को सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 19 मई 1979 को आपका देहावसान हो गया। बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और सूर साहित्य उनकी आलोचना और ऐतिहासिक पुस्तकों में से हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए हम उन्हें नमन करते हैं।

हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ों में आँखियों के झरोखों से फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। दोस्तों, आज विश्व आईबीडी डे है। ये दिन सूजन आंत्र रोग यानी इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने और मरीजों के समर्थन के लिए समर्पित है। आईबीडी ये पाचन तंत्र से जुड़ी एक दीर्घकालिक क्रॉनिक बीमारी है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो पेट में गंभीर सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। जागरूकता के प्रतीक के रूप में इस दिन बैंगनी रंग का रिबन पहना जाता है। दुनिया भर की प्रमुख इमारतों पर स्मारकों को बैंगनी रंग की रोशनी से रोशन भी किया जाता है। और आज विश्व हेपेटाइटिस टेस्टिंग दिवस भी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वायरल हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन के प्रति जागरूक करना, लक्षणों की पहचान करना और समय पर इसकी टेस्टिंग कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।

विशाल ददलानी की आवाज़ में राम संपत के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे तलाश फिल्म से। और इसी के साथ नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से मुझे यानी श्रीति को दीजिए अब इजाज़त।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
3: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। लेकर हाजिर है कार्यक्रम भावगीत, सुनवाएंगे एक आवश्यक संदेश के बाद।

0: और बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

भावगीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीदी। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार में शर्तें नहीं होती, प्यार में तो बस प्यार होता है। जो सुख पाने के लिए प्रेम चाहते हैं उन्हें सच्चा प्रेम कभी नहीं मिलता, और सुख वो भी चला जाता है। जो सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए तो सुख और दुख के मायने ही बदल जाया करते हैं। प्रेम में प्रेम करना ही परम सुख है। वो कहते हैं ना, जब आँखों का खारा पानी भी मीठा लगने लगे, जब दर्द में भी दिल को करार आने लगे, तब समझो प्रेम मिल गया।

नए अरमानों से सजे दिन रात बार बार नहीं आते, वो वक्त जब होंठ बिन बात मुस्कुराते हैं, जब आंखें खुद को एक नए रूप में देखने लगती है, जब पैरों में पड़ी पायल गीत गुनगुनाती है और चांद सीने में उतर आता है, वो वक्त बार बार नहीं आता।

बरबस ही कहने लगे थे आपसे अपने दिल की कहानी, दिल के गम की कहानी, मगर ये क्या, आपकी तो आंखें ही छलक आई। अब आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है मेरे दर्द और गम की परछाई। आप नहीं जानते, अनजान है इस बात से मुझे कि मुझे बस एक ही शिकायत है आपसे, और शायद एक सवाल भी, जो मेरा है उस दर्द और गम से भला आप क्यों गमजदा हैं।

अगर मोहब्बत की दावेदारी है तो खुशी और गम की भी हिस्सेदारी दे दो। खुशियों में तो हाथ थाम कर चलते हो, फिर गमों की आंच में अकेले क्यों चलते हो? ये कैसी दावेदारी है, ये कैसी हिस्सेदारी है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी? हम तो हमराह है ना, तो हम राज भी बना लो। तुम्हारी राहों के सिर्फ फूलों पर नहीं, कांटों का भी मुझे हकदार, हिस्सेदार बना लो।

की रंग और नूर की महफिल में मचलने लगता है। तुम्हारे आने की आहट तुमसे पहले आ जाती है। मन वीणा में खुशियों के सारे तार एक साथ झंकृत होने लगते हैं। पशुपेश में उलझे हैं नैन और मन कहता है आंखों से जाकर पहले उन्हें देखा, और आंखें कहती है पहले 16 श्रृंगार तो करने दे।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं छाया, हनीमून, वो कौन थी, आपकी परछाइयाँ, माया और अनुपमा। आवाज़ें थीं गानों के लिए लता मंगेशकर, तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी की। संगीतकार थे सलिल चौधरी, मदन मोहन और हेमंत कुमार। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र, राजा मेहंदी अली खान, मजरू सुल्तानपुरी और कैफी आज़मी। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल और ठुमरी गायन राग देसी और हिंडोली सारंग में।

राग देसी और हिंडोली सारंग में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल और ठुमरी गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये। दिन का 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsal.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित, नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत।

0: अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक करेंगे।
1: कृषि विभाग ने ICR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे।
0: इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। इस बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 101.76 रुपए और डीजल की कीमत 96.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह वृद्धि 15 मई को हुई, 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होमुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम में नक्शा पास से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम में प्रति नियुक्ति पर तैनात कार्यपालक अभियंता के स्थान पर सहायक नगर नियोजक यानी ATP को नक्शा पास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ग्रामीण जनता को वनों से जोड़ने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ वन सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर पुनर्जीवित करने, मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा करने, लैंड बैंक बनाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के साथ वन भूमि अतिक्रमण व अवैध खनन रोकने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म, बुनियादी ढांचा विकास और मानव पशु संघर्ष कम करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया, ताकि वनों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संसद रत्न अवार्ड समिति ने संसद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने, सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सम्मान को गोड्डा और झारखंड की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का सम्मान बताते हुए इस क्षेत्र की जागरूक और संघर्षशील जनता को समर्पित किया है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर रांची में जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9031110020 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा सचिव के श्री

0: श्रीनिवासन ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
1: बिजली विभाग के जन समस्या निवारण केंद्र आज कुसई कॉलोनी रांची में हम लोग शुभारंभ किए। ये राज्य स्तर के हम लोग इसको तैयारी किए हैं, आज से ये संचालन शुरू हो गया है। इसमें हमारे बिजली विभाग के संबंधित कितने भी आपका सुझाव है, समस्या है, जो भी आपकी जानकारी आप दे सकते हैं, उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं।
0: टाटा स्टील वित्तीय वर्ष 2026-27 तक डिजिटलीकरण और AI आधारित कार्य कुशलता के जरिए 7100 करोड़ रुपए की लागत कम करेगी। कंपनी के MD व CEO TV नरेंद्रन ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ऑटो सेक्टर की मजबूती से मांग बेहतर बनी हुई है। कंपनी गैल्वेनाइज्ड पैकेजिंग, ट्यूब और वायर जैसे डाउनस्ट्रीम व वैल्यू एडेड स्टील उत्पादों में विस्तार कर रही है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भू माफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायतों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को जमीन दलालों पर कानूनी कार्रवाई करने और सोना हाथों निवासी प्रकाश कुमार महतो को जमीन के पंजी 2 में सुधार नहीं होने की शिकायत पर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया है। खलारी के NK क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF ने KDH और डकरा इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। CISF अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, इसलिए तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से पुलिस एक युवक और युवती का शव बरामद किया है। खूंटी के DSP वरुण रजक ने बताया कि दोनों युवक युवती छौ नृत्य देखने गए थे और देर रात से लापता थे।
2: विशु पाहन और सोमी मुंडू जो कि जीवरी के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ छौ नृत्य देखने गए थे रात में। सुबह सूचना मिला कि ये दोनों घर नहीं आए हैं, गायब हैं। खोजबीन के उपरांत मेला से कुछ दूरी पर जंगल झाड़ी में दोनों का लाश बरामद हुआ। दोनों का उम्र करीब 17-18 साल है और इन लोगों के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार का निशान है मार करने का।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 335 अंक की वृद्धि के साथ 75,657 जबकि निफ्टी 111 अंक बढ़कर 23,762 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरिंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल प्रेमियों और हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 1:20 हुए हैं। सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
7: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।
8: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
9: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
9: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
9: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के तहत अभी हम आपको फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और इस संगीतमय सफ़र के हम सफ़र मैं हूँ आपकी दोस्त रेडियो सखी श्रीति। आज फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत फिल्म के गाने से। क्यों? क्योंकि आज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्मदिन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रशंसित अभिनेताओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्हें उनकी यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक और गहरी अभिनय शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc किया। उन्होंने वडोदरा और हरिद्वार में एक केमिस्ट के रूप में भी काम किया था। अभिनय की दुनिया में जाने के लिए जब उन्होंने दिल्ली और फिर मुंबई का रुख किया तो शुरुआत में पैसों की तंगी के कारण उन्हें नाइट वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी थी। उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की है। नवाजुद्दीन दुनिया के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी 8 फिल्में आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी और दिखाई गई हैं। 2012 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर में फैजल खान का किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना जिससे वे रातों रात स्टार बन गए। उनकी कुछ सबसे बेहतरीन फिल्मों में कहानी, द लंच बॉक्स, माझी द माउंटेन मैन, रमन राघव 2.0 और मंटू शामिल हैं। नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज सेक्रेट गेम्स में उनके गणेश गायतोंडे के किरदार को वैश्विक स्तर पर बहुत सराहना मिली। शून्य से शुरुआत करने वाले नवाजुद्दीन के अनुमानित नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए से अधिक है आज और उनका मुंबई में आलीशान घर भी है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद उन्हें अपने पैतृक गांव में खेती करने का शौक है और जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपने खेतों में काम करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके जन्मदिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं और आगे आने वाले स्वस्थ सफलतम जीवन की शुभकामनाओं के साथ आइए सुने उनकी अभिनीत फिल्म 3 का ये गाना।

कोई जाने ना, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लखविंदर वडाली, नीति मोहन की आवाज़ों में। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ गीत था, संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। और अब आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और मोहम्मद सईद की आवाज़ों में हिना फिल्म का गाना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था MM क्रीम का, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में बदलते रिश्ते फिल्म का गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है, अनजान का लिखा हुआ गीत।

शक्ति फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन था आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार थोड़ी

0: station 43.8 degrees Celsius and 43.5 degrees Celsius was recorded at Palan station. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
2: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions, with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
4: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का

0: पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2000

0: 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से फोन ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
4: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43

0: से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दिन के 2:30 हुए हैं। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। और एक बार फिर से हम गीत संगीत का सिलसिला आपको सुनवाएंगे हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के तहत। तो फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है और इस संगीतमय सफ़र की हम सफ़र मैं हूँ आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आइए आपको सुनवाते हैं रांझना फिल्म का गाना। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया, पूजा वैद्यनाथ की मिली जुली आवाज़ों में है ये गाना। AR रहमान का संगीत निर्देशन है, शब्द रचना है इरशाद कामिल की। आइए सुनते हैं।

हम दिल दे चुके सनम, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने, गीत लिखा था महबूब ने। आइए अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत निर्देशन है, जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

0: और इसी गाने के साथ आज का
1: नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। हजारीबाग में केंद्रीय सड़क निधि योजना से 107 करोड़ की लागत से बनने वाली 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का शिलान्यास हो गया है। भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास तक इस सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है।
2: ये लगभग 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है, पूरा हजारीबाग इसी से कनेक्ट होता है। यहाँ से लेकर के नगवा तक मतलब जितना बाईपास हुआ है, इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक का जो कनेक्टिविटी है अभी किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी रिलीफ होगा।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने रिम्स 2 और नए मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी। राहुल गांधी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए जनता के बीच सक्रिय रहने की सलाह दी। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां में 30 और 31 मई को भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर मार्गदर्शन लिया और उन्हें आमंत्रित किया। इस शिविर में 150 कार्यकर्ता पार्टी इतिहास, सोशल मीडिया और AI की तकनीक सीखेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हुआ है। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य जाँच और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
1: जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, तो हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, जनभागीदारी के माध्यम से जनजागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमान कार्यक्रम के तहत इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशन में सैचुरेशन मोड पर लाया जा सके।
0: बोकारो में बढ़ती बाइक चोरी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीएस सिटी थाना पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि आरोपियों पर 3 अन्य थानों में भी मामले दर्ज है। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि ये आरोपी झाड़ियों में छिपकर अपराध कर रहे थे। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
2: कर्माटांड थाना अंतर्गत रत्नोटी पहाड़िया टोला के पास से वहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उसी क्रम में एक और सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस कल की गिरफ्तारी में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2 केस इसमें दर्ज किया गया। के पास से जो कुल मोबाइल बरामद हुआ है, कुल 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 एटीएम, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल भी जब्ती हुई है।
0: झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम ने थाईलैंड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जामताड़ा के गरीब परिवार से आने वाली देवासी को इस ऐतिहासिक सफलता पर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार से ग्रामीण और गरीब खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान और युवा खिलाड़ी दीपिका सोरेन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे राज्य के लिए गौरवशाली पल बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।

0: नमस्ते।
1: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
1: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीरा अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
1: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
1: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
1: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते।

0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं भीमदेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
1: अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।

0: राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको।
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और

0: बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
2: हाँ?
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
4: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ।

0: किसी भी हाल में जाने कटनी नहीं देंगे,
1: नहीं कटने देंगे,
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
2: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
5: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे क्या कर रहे हो?
7: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो पर।
6: अरे भाई कौन है? रुको, इस हम चिपक जाएंगे पेड़ से।
8: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
6: अरे कहां से?
7: दो मिनट की बात हमें बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
6: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
8: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
8: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
2: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
8: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा, यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने

0: दुश्मनों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने होरी ठुमरी। कलाकार हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान।

उपशास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे होरी ठुमरी। कलाकार थे उस्ताद विलायत हुसैन खान। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिएगा मुख्य समाचार।

लायक बनाना है। रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन, स्पेन और दावोस दौरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 करोड़ के निवेश और एआई हब बनाने के दावों के बावजूद जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। भाजपा ने इन विदेश यात्राओं के परिणामों पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि केडाबीर गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान यह गोलीबारी हुई। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलहाल क्षेत्र में सघन तलाश अभियान जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। शाम के 4:02 हुए हैं। एक बार फिर से गीत संगीत का सिलसिला, जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। चलिए शुरुआत करते हैं वजीर फिल्म के गाने से। शांतनु मोइत्रा का संगीत निर्देशन है, जावेद अली की आवाज़ और गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे।

कभी हाँ कभी ना। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। संगीत निर्देशन था जतिन ललित का, गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में मझधार फिल्म से। संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है, शब्द रचना है समीर की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में एक लड़का एक लड़की फिल्म का गाना। आनंद मिलन का संगीत निर्देशन है समीर का लिखा हुआ गीत। दोस्तों आप ये गाना सुनिए और फिलहाल फिल्म संगीत के कार्यक्रम से मुझे यानी श्रुति को दीजिए अब इजाज़त। कार्यक्रम अभी जारी रहेगा फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा अपनी रेडियो दोस्त कविता सिंह के साथ। फिलहाल सुनिए एक लड़का एक लड़की फिल्म का ये गाना।

हकीकत फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ों में, बोल थे नवाब आरजू के, धुन बनाई थी दिलीप सेन समीर सेन ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, फिल्म है आंदोलन।

इंग्लिश बाबू देसी मैम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी। बोल थे योगेश और रानी मलिक के। धुन बनाई थी निखिल विना ने। गोपी किशन फिल्म का गीत लीजिए सुनिए। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

जुदाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में। बोल थे समीर के, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में राहत इंदौरी का लिखा, साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है क्या यही प्यार है।

0: इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब
1: शाम के 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के होटवार जेल में बंद महिला कैदी के यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। झलसा की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर जस्टिस एसएन प्रसाद ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी जांच टीम तुरंत बरसामुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। बोकारो स्थित दामोदर नदी के बरवा घाट में आज नहाने गए 2 स्कूली छात्र डूब गए। एलएच आजाद नगर के रहने वाले 3 छात्र स्कूटी से नदी पहुंचे थे। गोताखोरों की मदद से छात्र विष्णु का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता छात्र शनि की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह अपराधी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता था। इसके पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर गोल शॉटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। सांसद ने टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ाते हुए 2,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार मित्रों, मैं हूं क्षमा श्री दुबे, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आइए कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं की शिक्षा, कौशल और कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। यदि युवाओं को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो ऐसी एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाने का कार्य करती है। आज के समय में केवल शैक्षणिक डिग्री पर्याप्त नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल भी आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करती है। PMKVY, जिसे संक्षिप्त में ये भी कहा जाता है, ये भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत किया जाता है तथा इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को उद्योगों के आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। सरकार का मानना है कि यदि युवाओं को सही प्रशिक्षण मिले तो वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। यह डिजिटल इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, बेरोजगारी कम करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं निशुल्क प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र प्रदान करना, रोजगार सहायता, अल्पकालीन पाठ्यक्रम और आधुनिक प्रशिक्षण देकर देशभक्त में इसे केंद्र बनाना। प्रशिक्षण के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी और वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, पर्यटन और होटल।

प्रबंधन। पात्रता यही है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, 15 से 45 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग महत्व है कि सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और स्वास्थ्य सेवाओं को जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आइए अब सुनते हैं एक गीत इलाही, फिल्म ये जवानी है दीवानी का। आवाज अरिजीत सिंह की है, गीतकार है अमित भट्टाचार्य, अमिताभ भट्टाचार्य, और संगीतकार हैं प्रीतम।

अब हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उनका योगदान हिंदी साहित्य के जगत में अनन्य है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। परंपरा और आधुनिकता के सेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी यूवाइन के साहित्य से कैसे प्रेरणा ले। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और संस्कृति चिंतक थे। उन्होंने भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इसी कारण उन्हें परंपरा और आधुनिकता का सेतु भी कहा जाता है। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया में हुआ व 19 मई 1979 में उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। उनके साहित्य में ज्ञान, मानवता, तर्कशीलता

0: कुछ मुख्य कीर्तिमानों की चर्चा करेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनः खोजकर हिंदी साहित्य की भूमिका जैसी कालजयी रचना दी। उसके उपरांत मध्यकालीन संत साहित्य, नाथ और सूफी परंपरा पर गहन शोध किया। इन सभी रचनाओं में उनकी भाषा सरल, संस्कृत निष्ठ और विचार प्रधान थी, जो पाठक को इन विषयों पर सोचने को मजबूर करती हैं। आइए शहर की जानी मानी साहित्यकार सुश्री पूनम महानंद से जानते हैं इस विषय पर उनके विचार।
1: नमस्कार, मेरा नाम पूनम महानंद है और मैं एक कवित्री हूँ। और अगर बात करें पद्म भूषण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

0: नमस्कार, मेरा नाम पूनम महानंद है और मैं एक कवित्री हूँ। और अगर बात करें पद्म भूषण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह उन्होंने परंपरा और आधुनिक लेखन के बीच एक सेतु हम युवाओं के लिए तैयार किया है, यह निस्संदेह हम सब के लिए एक कालजयी प्रेरणा का स्रोत है। मुझे याद आता है उनका एक निबंध कुटज। कुटज का जो मुख्य पात्र है, उस पात्र से हमें ये सीख मिलती है कि विकट परिस्थितियों में भी किस तरह हमें धैर्य को नहीं छोड़ना है, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना है और बिना किसी से मदद मांगे, बिना उन्नति की खुशामद किए, बिना चाटुकारिता किए अपनी जरूरतों पर खुद को पूरा करना है। आत्मसम्मान और निर्भरता हम सबके लिए कितनी जरूरी है, ये बात तब समझ में आती है जब हम अपराजेय जिजीविषा की ओर बढ़ते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी हमें जीने की कला आनी ही चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, मन हमें इधर उधर ना भटकाए, इसलिए हमें मन पर सवारी करना भी सीखना होता है ताकि हम सब स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की सेवा कर सकें। स्वावलंबन और संघर्ष के पथों पर आगे बढ़ते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना हम युवाओं में जगाने की कोशिश की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। युवाओं को समृद्ध परंपरा से जोड़ना, आदिकाल, कबीर और सूर साहित्य से जोड़ना, ये सिर्फ ना उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, वरन उसमें यह संदेश भी था कि केवल डिग्री हासिल करना या ज्ञानी बनना काफी नहीं है, बल्कि मनुष्य बनने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और जो इस साधना को समझ गया, वही आगे बढ़ गया, वही तर गया और वही समाज और राष्ट्र में बदलाव लाने के लिए एक सबसे उपयुक्त पात्र हो सकता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि इनकी रचनाएं युवाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। द्विवेदी जी ने प्राचीन भारत ज्ञान, लोक संस्कृति और संत परंपरा को आधुनिक संदर्भ में समझाया। उनकी रचनाओं में मिथक, इतिहास और समकालीन समस्याएं मिलती हैं एक साथ, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं कि वे कैसे अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाएं। आइए सुनते हैं एक गीत, एक तारा, फिल्म वेकअप सिड से। संगीतकार अमित त्रिवेदी हैं, बोल हैं जावेद अख्तर के, आवाज दी है कविता सेठ व अमिताभ भट्टाचार्य ने।

इतने मधुर गीत के बाद कहना चाहूंगी कि संगीत व शब्दों में वो ताकत होती है जो खामोशी को भी आवाज देती है, और जब युवा अपनी सोच लिखना शुरू करते हैं तब समाज में बदलाव व नए विचार जन्म लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं युवाओं के लिए लेखन व ब्लॉगिंग में अवसर। साथियों, आज का समय तकनीक और इंटरनेट का है। पहले अगर किसी को लिखने में सहायता चाहिए होती थी तो उसे अखबार व पत्रकारिता के पत्रिका का सहारा लेना होता था, लेकिन अब हर युवा मोबाइल या लैपटॉप पर ही ब्लॉग लिख सकता है। यही कारण है कि लेखन और ब्लॉगिंग युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है। लेखन के क्षेत्र में आज कई तरह के काम उपलब्ध हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, SEO राइटिंग यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग इत्यादि। कंपनियां, वेबसाइट व यूट्यूब वाले लोग अच्छे लेखकों को अच्छा पैसा देते हैं लिखने के लिए। जो छात्र फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर काम करते हैं वे घर बैठे ही अच्छी खासी कमाई करते हैं। इसलिए अगर आपको लेखन में रुचि है तो उसे कागज़ पर उतारिए। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के रहने वाले युवा साहित्यकार निशान सिंह से और इस विषय पर उनके विचार जानते हैं।

नमस्कार, मैं निशांत सिंह, एक युवा कवि और एक साहित्य सेवी होने के नाते आप सभी के समक्ष एक विषय रखना चाहता हूँ, युवाओं के लिए लेखन और ब्लॉगिंग के अवसर। जैसा कि

0: हम सभी को पता है कि आज का दौर डिजिटल दुनिया का दौर है। पहले लोग अपनी बातें सिर्फ डायरी तक सीमित रखते नमस्कार, मैं निशांत सिंह, एक युवा कवि और एक साहित्य सेवी होने के नाते आप सभी के समक्ष एक विषय रखना चाहता हूँ, युवाओं के लिए लेखन और ब्लॉगिंग के अवसर। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज का दौर डिजिटल दुनिया का दौर है। पहले लोग अपनी बातें सिर्फ डायरी तक सीमित रखते थे, लेकिन आज वही बातें ब्लॉग, आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट बनकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है। लेखन अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युवाओं के लिए पहचान, करियर और कमाई, इन तीनों का माध्यम बन चुका है। अगर आपके पास विचार हैं, अनुभव है या समाज को देखने का एक अलग नजरिया है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक बड़ा मंच हो सकता है। आज कई युवा शिक्षा, तकनीक, कविता, यात्रा, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लिखकर लोगों से जुड़ रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है कि शुरुआत करने के लिए किसी बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है, हमें केवल तीन चीज चाहिए। कौन सी चीज? पहला मोबाइल, दूसरा इंटरनेट और आपके शब्द, बस काफी हैं। लेखन हमें सोचने की ताकत देता है और ब्लॉगिंग उस सोच को दुनिया तक पहुंचाने का अवसर। आज कंपनियां अच्छे कंटेंट राइटर और क्रिएटिव लोगों की तलाश में हैं। ये तो अच्छी बात है, यानी अगर आपके शब्दों में सच्चाई और असर है तो अवसरों की कमी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लिखना केवल शब्दों को जोड़ना नहीं, लोग शब्दों को जोड़कर, तोड़ मरोड़कर अपने आप को कवि बताना चाहते हैं, जो गलत है, बल्कि लिखना लोगों के दिलों को जोड़ना है। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी को प्रेरित कर सकती है, किसी की सोच बदल सकती है। और जब युवा सकारात्मक सोच के साथ लिखते हैं, तब वही विचार समाज और देश की तरक्की का कारण बनता है। इसलिए अपने विचार को दबाइए मत, उन्हें शब्द दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आवाज़ किसी की जिंदगी, किसी की उम्मीद बन सकती है। धन्यवाद।
1: बहुत सही कहा निशांत आपने, आपकी अपने विचारों को दबाइए मत, उन्हें शब्द दीजिए। ब्लॉगिंग की बात करें तो इसमें युवा अपनी पसंद का कोई भी विषय चुन सकते हैं, या किसी यात्रा, नई तकनीक, मोटिवेशन, खाना, शिक्षा, किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसके लिए ब्लॉगर वर्डप्रेस यानी प्लेटफॉर्म जो कि मुफ्त सुविधा प्रदान करती है, गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे अच्छी कमाई होती है ब्लॉग और अच्छे लेख आने पर। इससे बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि हमारी भाषा सुधरती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और आत्मविश्वास आता है। युवाओं के लिए क्षेत्र में कई अवसर हैं। वाईसी के साथ मैं आपको आज के मौसम व खेल जगत की खबरें सुनाती हूँ। कल इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने 180 रन बनाए, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार 44 रनों की पारी खेली। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन ने 70 रनों से पारी खेलकर टीम को जीत हासिल कराई। और आज का मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस, जो कि है शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन्स कोलकाता में। फुटबॉल में यूरोपियन लीग अपने अंतिम चरण पर है और हमारे शहर की टीम जमशेदपुर FC का अगला मैच है 21 मई को शाम 5:30 बजे से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, वर्षा की संभावना भी है। इसी के साथ कार्यक्रम से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।

युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

श्रोताओं किसी ने क्या खूब कहा है, शाम सिर्फ दिन के ढलने का नाम नहीं, ये तो एक वादा है कुदरत का कि कल सुबह एक नई रोशनी फिर आएगी। नमस्कार श्रोताओं, एक बेहद खूबसूरत शाम आप सभी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी मंजू लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम कल कारखाने FM के 102.4 MHz पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत।

श्रोताओं, जब भी हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जीत, हार, मेडल और रिकॉर्ड्स की तस्वीरें घूमने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी खेल की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? क्या वो सिर्फ एक ट्रॉफी है? जी नहीं, खेल की असली आत्मा, उसकी सबसे बड़ी पहचान है निष्पक्षता, यानी फेयर प्ले। आज है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि मैदान चाहे खेल का हो या जिंदगी का, नियमों का सम्मान करना और विरोधी का आदर करना ही हमें एक सच्चा खिलाड़ी बनाता है। फेयर प्ले का मतलब सिर्फ नियमों की किताब को मानना नहीं है, इसका मतलब है ईमानदारी। जब एक खिलाड़ी अपनी गलती खुद मान लेता है, जब एक एथलीट अपने गिरते हुए विरोधी को संभालने की कोशिश करता है, या जब कोई अंपायर के फैसले को मुस्कुराकर स्वीकार करता है, तब जन्म लेती है खेल भावना। इतिहास गवाह है कि दुनिया उन विजेताओं को भूल सकती है जिन्होंने धोखे से जीत हासिल की, लेकिन उन खिलाड़ियों को कभी नहीं भूलती जिन्होंने हार की परवाह किए बिना निष्पक्षता का रास्ता चुना। खेल हमें लड़ना सिखाता है लेकिन नफरत करना नहीं। खेल हमें जीतना सिखाता है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं।

श्रोताओं, आज इस विशेष अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल मैदान पर बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी इस निष्पक्षता को अपनाएं। डिजिटल मीडिया के इस दौर में जहां हर तरफ आगे निकलने की होड़ मची है, वहां ईमानदारी और सच्चे रास्ते पर चलना और भी जरूरी हो जाता है। तो आइए ना, आज साथ मिलकर हम एक संकल्प ले कि चाहे हम मैदान में खेल रहे हो या जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, हम हमेशा ईमानदारी खेल भावना का सम्मान करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जीत तो कुछ समय की होती है, लेकिन आपकी निष्पक्षता और आपका चरित्र हमेशा अमर रहता है। और इसी सच्चे चरित्र के दम पर अपनी हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता ये बेहतरीन सा गाना FM के 102.4 MHz पर कार्यक्रम कल का था।

आज हम याद कर रहे हैं भारत के एक ऐसे ही गौरव देश के छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को, जिनकी आज जयंती है। 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश में जन्मे संजीव रेड्डी का जीवन राष्ट्र सेवा की एक अद्भुत मिसाल है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और देश के लिए जेल भी गए। आजादी के बाद वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनकी निष्पक्षता आज भी संसदीय इतिहास में एक मिसाल मानी जाती है।

साल 1977 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे ऐतिहासिक मोड़ था। वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया। हर किसी ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। सबसे खास बात ये रही कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की सुख सुविधाओं में कटौती की और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने को वापस कर दिया। वो हमेशा गाँव के विकास और किसानों की खुशहाली के समर्थक रहे। 1 जून 1996 को भले ही वो हमसे विदा हो गए, लेकिन उनकी ईमानदारी और देशभक्ति की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम कल कारखाने। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम जानकारियों के सिलसिले को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले ही सुनते हैं ये संदेश।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आप सबके लिए एक बहुत ही खास जानकारी। प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप, इस विषय पर आज आपके साथ जानकारी साझा कर रही है सुरुचि। तो आइए सुने ये जानकारी।
2: प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है। आज के समय में यह विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे इस खूबसूरत ग्रह पे भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे यह जनजीवन के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। यही कारण है कि आज प्लास्टिक प्रदूषण का प्रकोप चिंता का विषय बना हुआ है। इन दो उपायों का अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला, उपयोग न करके या अन्य विकल्पों को अपनाकर। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि अब हम इनके उपयोग के आदि हो चुके हैं तथा यह काफी सस्ते भी हैं, इसलिए हम इनके उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को आसानी से बंद कर सकते हैं जिनके इको फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि बाजार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग के जगह जूट, कपड़े या पेपर से बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पार्टियों और उत्सवों के दौरान हम प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों का उपयोग के जगह स्टील, कागज, थर्मोकोल या अन्य उत्पादों से बने वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपाय है पुनरुपयोग यानी रीयूज। यदि हम प्लास्टिक बैगों और प्लास्टिक से बने अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं बंद कर सकते, तो कम से कम उन्हें फेंकने से पहले जितनी बार भी हो सके उनका पुनरुपयोग करें। प्लास्टिक बैगों और सामानों का उपयोग करके उन्हें फेंक देना लगभग हमारा आदत सा बन चुका है, जबकि यदि हम चाहें तो फेंकने से पहले हम इनका पुनरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह काफी आवश्यक है कि हम फेंकने से पहले इनका पुनरुपयोग करें। इस प्रकार से हम प्लास्टिक कचरे को कम करने में और प्लास्टिक प्रदूषण के रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि किफायती और उपयोग में आसान। प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में से एक है और इससे डब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि किफायती होने के साथ इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसलिए यह जल और भूमि में विघटित नहीं होता है। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे यह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इन कुप्रभावों से प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण और पृथ्वी के जनजीवन पर प्रभाव डालता है, जल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। यही पानी हमारे उपयोग के लिए हम तक पहुंचाया जाता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम इन्हें कितना भी छाने या अपने वास्तविक अवस्था में कभी वापस नहीं आ सकता, और इस पानी के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भूमि को प्रदूषित करता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का लैंडफिल निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा लिए जाने पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, और प्लास्टिक के यह टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि मिट्टी के गुण तथा उपजाऊ को नष्ट कर देता है। पशुओं के लिए हानिकारक। ज्यादातर घुमंतु पशुओं द्वारा कचरे में फेंका गया खाना खाया जाता है। वह प्लास्टिक बैगों को अपने खाने के साथ खा लेते हैं, जो उनके आंतों में फंस जाता है, जिससे अंत में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर देता है। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व भर के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों के कारण यह और भी बढ़ता जा रहा है। यह वह समय है जब हमें इसके समाधान के लिए कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार हो सकता है। प्लास्टिक उत्पादन का नियंत्रण करके। प्लास्टिक वस्तुओं के बढ़ते मांग के कारण विश्व भर में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। सरकार को अब किसी नई संस्था को प्लास्टिक उत्पादन की मंजूरी नहीं देनी चाहिए जिससे प्लास्टिक के उत्पादन को नियंत्रित किया जा सके। प्लास्टिक के वस्तुओं पर प्रतिबंध, कई देशों के सरकारों द्वारा प्लास्टिक बैग के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा ही सबसे ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाया जाता है। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों में इन प्रतिबंधों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। इसके लिए सरकार को प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। जागरूकता फैलाकर इसके साथ ही लोगों में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। यह कार्य टेलीविजन और रेडियो, प्रिंट मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यमों से भी किया जा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कुछ अन्य आसान उपाय इस प्रकार हैं। प्लास्टिक बैगों का उपयोग ना करके प्लास्टिक बैग टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर पानी के स्रोतों में मिल जाता है जिससे यह मिट्टी में मिलकर पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही यह जलीय जीवन पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। ज्यादातर यह बैग किराने का सामान लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि हम चाहें तो आसानी से इनका उपयोग बंद करके रीयूज होने वाले कपड़ों के बैगों को अपना सकते हैं। बोतल बंद पानी का उपयोग बंद करके, बोतल बंद पानी प्लास्टिक के बोतलों और ग्लासों में आता है। यह प्रयुक्त पानी के बोतल और ग्लास प्लास्टिक प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम बोतल बंद पानी को खरीदना बंद कर दें और इसके बजाय अपने खुद के पानी के बोतलों का इस्तेमाल करें। बाहर का खाना मंगाना बंद करके, सामान्यतः बाहर का खाना प्लास्टिक के डिब्बों में पैक

0: करके दिया जाता है, जो कि प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का कारण बनता है। इसलिए रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के जगह हमें घर का बना हुआ भोजन करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छा है। रीयूज एवं रिसाइकलिंग करके, बहुत सारी रिसाइकलिंग कंपनियां इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल और अन्य चीजें लेती हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय हमें इन चीजों को इन रिसाइकलिंग कंपनियों को दे देना चाहिए। किराने का सामान थोक में खरीदकर, किराने के छोटे छोटे कई पैकेटों को खरीदने से अच्छा है कि हम एक बड़ा पैकेट खरीद लें, क्योंकि अमूमन यह चीजें प्लास्टिक के छोटे छोटे पन्नियों या डिब्बों में पैक होते हैं। इस तरीके को अपनाकर भी हम प्लास्टिक के कचरे में कमी ला सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। शोधों से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में प्लास्टिक का उपयोग काफी तेजी से बढ़ा है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने में काफी आसान और किफायती भी होता है। यही वजह है कि लोगों के बीच प्लास्टिक से बने उत्पाद इतने लोकप्रिय हैं। लोगों की बढ़ती मांगों को देखते हुए प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। समुद्री जीवन प्लास्टिक प्रदूषण से सबसे बुरी तरह से प्रभावित। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक के कण हवा तथा पानी द्वारा समुद्रों, महासागरों और अन्य पानी के स्रोतों में मिला दिए जाते हैं। वह लोग जो पिकनिक और कैंपिंग के लिए जाते हैं, उनके द्वारा भी प्लास्टिक बोतलों और पैकेटों के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाया जाता है। यह सब नदियों और समुद्रों में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। प्रतिवर्ष कई समुद्री जीव प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से अपनी जान गंवा बैठते हैं, और शोधकर्ताओं का दावा है कि आने वाले समय में इस संख्या में और इजाफा होने वाला है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। प्लास्टिक पदार्थों का निस्तारण करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब प्लास्टिक का कचरा लैंडफिल्स या पानी के स्रोतों में पहुंच जाता है, तब यह एक गंभीर संकट बन जाता है। लकड़ी और कागज की तरह हम इनका दहन करके भी इसे समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक के दहन से कई सारी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि पृथ्वी के वातावरण और जनजीवन के लिए काफी हानिकारक हैं। इस वजह से प्लास्टिक वायु, जल तथा भूमि तीनों तरह के प्रदूषण फैलाता है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, परंतु प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, पर हम चाहें तो निश्चित रूप से इसके प्रयोग को कम जरूर कर सकते हैं। प्लास्टिक से बने कई उत्पाद जैसे कि प्लास्टिक बैग, डिब्बे, ग्लास, बोतल वगैरह की जगह हम आसानी से पर्यावरण के अनुकूल अन्य उत्पादों जैसे कि कपड़े, पेपर बैग, स्टील से बने बर्तनों और अन्य चीजों का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करना मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी सुरुचि।

श्रोताओं, अब बात देश की गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को मजबूत करने वाली एक बेहद अहम योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा संबल है। इसकी मंशा गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की थोड़ी भरपाई करना और गर्भवती महिलाओं को सही आराम और पोषण मिल सके इसके लिए नकद प्रोत्साहन राशि देना है। तो अब आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्या आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम में पहले बच्चे के जन्म पर पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माओं को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। दूसरे बच्चे के जन्म पर अगर वो बेटी होती है तो 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर उस नियम के दायरे में आप आते हैं तो आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए महिला की उम्र कम से कम 19 साल और अधिक से अधिक 55 साल होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वहीं बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन और उसका वैक्सीनेशन भी पूरा होना चाहिए।

अब एक और खास बात, जो महिलाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी या संस्था में नियमित रोजगार में हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। ये योजना खास तौर से असंगठित क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं के लिए है। वहीं इस योजना का लाभ लेना अब और भी आसान है। पात्र महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकती है। इसके अलावा आप भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmmvy-cas.nic.in पर जाकर खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती है। आवेदन के लिए मां का आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक जो आधार से लिंक हो, और बच्चे का जन्म या फिर टीकाकरण कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो देर किस बात की, अगर आपके घर में या आसपास कोई पात्र लाभार्थी है तो उन्हें आज ही इस योजना के बारे में बताएं, क्योंकि सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बच्चा, यही इस योजना का मकसद है। श्रोताओं, अब इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना फिल्म बर्फी से अभी आप सुन रहे थे निखिल पॉल और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत निर्देशन था प्रीतम का और श्रमिक श्रोताओं इसी गाने के साथ वक्त हो चला कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री चिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
3: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and investment ties between India and the Nordic region. Key areas of focus included technology and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi held bilateral meetings with his counterparts from Iceland, Finland and Denmark. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour, and the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
4: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Stressing the need for complete integrity and transparency in the conduct of the examination, Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. Meanwhile, the top court also dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines, as it observed that the right to live with dignity encompasses the right to move freely without the threat of harm from dog bite attacks. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Falta Assembly constituency to be held on Thursday. Mr. Khan in a statement said his decision was aimed at ensuring peace and development in the region and welcomed the special package announced for Falta by the new BJP-led government. With Khan out of the fray, the contest will now be among BJP candidate Debangshu Panda, Congress nominee Abdul Razak Mullah and CPIM candidate Sambhunath Kurmi. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a 3-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In a social media post, Mr. Singh said the visit is aimed at further strengthening India-Republic of Korea defence cooperation and strategic partnership. The Kremlin

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संताली लोकगीत। कलाकार हैं मिथुन सोरेन व साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता सिंचाई के लिए सरकारी योजनाएं। भेंटवार्ताकार होंगी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अर्चना तिर्की। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम कृषि जगत। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, मोची, दर्जी, ईंट भट्टा मजदूर जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और 60 वर्ष की आयु के बाद लाभुक को आजीवन 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। लाभार्थी के मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को 15% यानी 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। इस योजना में जितना अंशदान श्रमिक द्वारा दिया जाता है उतनी ही राशि का योगदान केंद्र सरकार भी करती है। और इसमें पंजीकरण करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता तथा एक मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। योग्य श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक का भुगतान करके खाता खोला जा सकता है। साथ ही आप माई PMSYM वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।

किसान भाइयों, बारिश का मौसम कुछ ही दिनों में आ जाएगा, इसलिए बारिश के पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। वर्षा जल संचयन बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने और उसे भविष्य के उपयोग या भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके प्रमुख तरीकों से छत आधारित संचयन और भूमि आधारित संचयन है। छत पर जमा पानी को पाइप के जरिए नीचे बने बड़े स्टोरेज टैंक या कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। पीने के पानी के लिए यह सबसे बेहतरीन तरीका है। रिचार्ज पिट एक ऐसा तरीका है जिसमें घर या बगीचे में एक गड्ढा बनाकर उसमें कंकड़, पत्थर और रेत भर दी जाती है। छत का पानी पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में जाता है और छनकर जमीन के अंदर चला जाता है। अगर जगह ज़्यादा है तो लंबी सकरी खाइयाँ बनाकर उन्हें पत्थरों और बजरी से भर दिया जाता है, जिससे तेजी से पानी जमीन में सोखता है। इसे रिचार्ज ट्रेंच कहते हैं। यदि आपके घर में कोई पुराना सूखा कुआं या बोरवेल है तो छत के पानी को फिल्टर करके सीधे उसमें डाला जा सकता है।

इसके अलावा बारिश के बहते पानी को खेतों के किनारे बने छोटे तालाबों या पारंपरिक जोहड़ में इकट्ठा किया जाता है और इसका उपयोग कृषि और पशुओं के लिए किया जाता है। इस तरह किसान भाइयों, वर्षा जल संचयन के तमाम तरीके हैं जिसे अपनाकर हम बारिश के पानी को बर्बाद किए बिना भविष्य के लिए संचय कर सकते हैं।

0: किसान भाइयों, जब हम खेती किसानी करते हैं तो उसमें सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिंचाई के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, आइए सुनते हैं इसी विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं सुश्री अर्चना तिर्की।
1: श्रोताओं, हमारे राज्य झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था क्या है, या फिर हम यूँ कहें कि पूर्वी सिंहभूम ज़िले के आसपास किस तरह से किसान सिंचाई करते हैं और सरकार उसे क्या सुविधाएं देती हैं सिंचाई के लिए, या सिंचाई के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कार्यक्रम कृषि जगत में आज हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ज़िला भूमि संरक्षण पदाधिकारी सुश्री अर्चना तिर्की। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैडम, सिंचाई की जो व्यवस्था है हमारे ज़िले और उसके आसपास में क्या होता है, पारंपरिक सिंचाई करने से जो उत्पादन होता है वो सही नहीं होता है, तो किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है और आप लोग अपने तरफ से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा वो सिंचाई करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त।
2: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के भूमि संरक्षण द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि कार्य हेतु मूल रूप से सिंचाई सुविधा भूमि संरक्षण द्वारा दी जाती है
1: जी।
2: उसमें सिंचाई में सबसे पहले हमारा जो योजना है वो है निजी सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार।
1: अच्छा।
2: इसमें हम उसमें तालाब का गहरीकरण करते हैं और उनकी साफ़ सफाई की जाती है ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है तालाब की बढ़ जाए और लोग रबी क्रॉप उसमें कर पाएँ।
1: इसमें क्या तालाब अपना होना चाहिए या कॉमन तालाब में भी हो सकता है?
2: इसमें ये आपका सरकारी तालाब भी होता है और निजी तालाब भी होता है। ये एक उस लाभ पाने वाले तालाब के आसपास के लोगों का एक समूह बनाया जाता है।
1: अच्छा।
2: पानी पंचायत जो लोग उसके आसपास खेती करते हैं
1: सहकारी तौर पर।
2: जी
1: हाँ,
2: वो ग्रुप में ही क्लस्टर में लोग खेती करें ये उद्देश्य रहता है। सिर्फ एक लाभ ना हो, उस जगह के सभी लोग उससे लाभ पाए, इसलिए समूह को दिया जाता है
1: जी।
2: ये करीबन इन तालाबों का साइज 1 से लेकर 5 एकड़ तक की होनी चाहिए, जिसमें हम लोग 20 से 25 एकड़ जमीन सिंचाई कर सके, इतने लाभ पा सके उस तालाब से। ये होता है इनमें सरकारी अनुदान करीबन 90% है
1: जी।
2: तो इस तरह से हम लोग एक तालाब को फिर से जीवित कर देते हैं। तालाब को हमेशा हर 10 साल में जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती ही है और इसमें लोग आय के लिए मछली बत्तख ये सब भी पाल सकते हैं।
1: दोनों काम
2: आय के लिए ये भी आपका हो सकता है। दूसरी हमारी योजना है पीटी परकोलेशन टैंक, ये सिंचाई की हमारी दूसरी सुविधा है
1: जी।
2: जिसमें हम लोग खेत में ही जहाँ आसपास खेती करने योग्य भूमि हो उसके लिए परकोलेशन टैंक का नया निर्माण कराते हैं। ये इसका साइज करीबन 120 बाई 100 और गहरा करीबन 12 फीट तक होता है। इसमें यह है कि बरसाती पानी इसमें आपका रन ऑफ वाटर सारा इसमें कलेक्ट होता है, कुछ पानी परकुलेट होते हुए भी तालाब में भर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: बहुत जगह देखा गया है खुदाई के साथ ही तालाब भर जाता है, तो वो सब एक अच्छा स्रोत है आपका सिंचाई के लिए और आपका मछली पालने के लिए बत्तख के लिए, ये है। और फिर हमारी तीसरी योजना है डीप बोरिंग की।
1: अच्छा।
2: हम बोरिंग की भी सुविधा देते
1: जहां
2: हैं
1: तालाब नहीं
2: है, जहां तालाब नहीं है, जहां बोरिंग से लोग अगर सिंचाई करना चाहते हैं करीबन 5 एकड़ की सिंचाई क्षेत्र इससे आप डेवलप कर सकते हैं, बोरिंग की योजना है वो भी सारे ये सारी योजना मेरे ग्रुप को मिलता है समूह।
1: अच्छा।
2: उस आसपास के रहने वाले लोग एक साथ इससे सिंचाई कर सकते हैं, तो ये मेरी 3 योजनाएँ सिंचाई से संबंधित। फिर हमारी दूसरी और एक योजना है कृषि कार्य के लिए यांत्रिकरण की योजना।
1: अच्छा।
2: इसमें महिला स्वयं सहायता समूह छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए सिंचाई यंत्र दिया जाता है, पंप सेट।
1: पंप सेट
2: जी,
1: जी, जी, जी, जी,
2: जी जिनके पास तालाब है ना, खास

0: जैसे हमारे जिनका तालाब निर्माण कराया गया वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं,
1: जी
0: जिनके पास जो भी सुविधा हो, कुआं हो, ऐसे भी तालाब हो,
1: हाँ, मतलब
0: तो
1: जहाँ से पानी का स्रोत
0: पानी का
1: आए।
0: स्रोत है, हाँ,
1: हाँ
0: वो करीबन 1.5 से 5 HP तक के इलेक्ट्रिक, डीजल, पेट्रोल पंप सेट आप ले सकते हैं, वो भी 90% सब्सिडी में।
1: ये गवर्नमेंट सब्सिडी
0: जी
1: देती है।
0: जी हाँ,
1: जी
0: 10% लाभुक का अंशदान होता
1: जी
0: है और ये इसमें सब्सिडी है। और इसमें एक 1 HP का ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट है,
1: अच्छा
0: इसमें ट्रॉली लगी रहती है, आप उसे मूव भी करा सकते हैं, जहाँ
1: अच्छा
0: जहाँ स्रोत है जल का वहाँ आप उसको मूव करा के वहाँ से आप पटवन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी योजना है।
1: कृषक जो होते हैं अनजान होते हैं इन सब योजनाओं के बारे में, तो ये भी बता दीजिए कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें और किस तरह से वो इसका लाभ उठा सके।
0: वैसे तो ये सब अब तो हमको नहीं लगता है इतने लोग अनजान होंगे, जानते
1: जी
0: होंगे इतना, जब कुछ निर्माण होता
1: जी
0: है तो
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: उसका
1: जी
0: प्रचार ही
1: हाँ
0: होता
1: बिल्कुल
0: है। जी,
1: बिल्कुल
0: तो इसके हमारे यहाँ 2 SCO ऑफिस है, एक घाटशिला SCO ऑफिस, जिला भूमि संरक्षण ऑफिस, और दूसरा जमशेदपुर
1: जी
0: जिला भूमि संरक्षण ऑफिस।
1: जी
0: यहाँ आकर आप आवेदन अपना जमा कर सकते हैं और फिर आपका लोग यहाँ जाकर अपना साइट दिखा सकते हैं, उससे सिलेक्ट किया जाएगा, उपयुक्त पाया जाएगा तो फिर उसमें निर्माण कराया जाएगा।
1: तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ज़िले के आसपास या ज़िले में रहने वाले किसानों को ताकि वो इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठा सकें।
0: कि आप सरकार आपके लिए ये सारी योजना बनाती है ताकि आप किसी तरह से असहाय महसूस ना करें
1: जी
0: कृषि कार्य के लिए,
1: जी
0: सरकार आपकी मदद के लिए है। जैसे हमारी और एक योजना
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: जिसमें आपका बड़े ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: है ना, बड़े ट्रैक्टर
1: हाँ
0: खेती के लिए, अब हम
1: खेती के
0: लोग
1: लिए
0: हाँ
1: जी
0: लेबर की हमारे पास शॉर्टेज है, फिर समय से हमें
1: ऐसे भी
0: खेत तैयार
1: आधुनिक
0: करना
1: तकनीक
0: पड़ता
1: अगर
0: है।
1: बोलिए तो ट्रैक्टर का
0: जी हाँ
1: उपयोग करना
0: जी हाँ
1: ज़रूरी हो
0: जी
1: गया
0: हाँ,
1: है।
0: ये आप ये भी हमारे एक समूह को देने वाली योजना है,
1: जी
0: ग्रुप को, SHG ग्रुप हो या किसी कृषक का समूह हो, FPO हो, लैम्स पैक के
1: जी
0: समूह
1: जी
0: हो,
1: जी
0: इनको बड़े ट्रैक्टर की योजना है, जिसमें मिनी ट्रैक्टर की भी योजना है। जो बड़े ट्रैक्टर की योजना है वो 10 लाख रुपए का पैकेज में, इसमें 50% सब्सिडी में सरकार आपको
1: देती है
0: ये दे रही है, और
1: जी
0: मिनी ट्रैक्टर आपको 80% सब्सिडी में
1: अच्छा
0: मिनी ट्रैक्टर दे रही है। तो आप इन सभी योजना से लाभान्वित हुए, इसका फायदा उठाए।
1: अंत में एक संदेश कृषक भाइयों को या कृषक बहनों को हम बोल सकते हैं जो आपको सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे, वो किस तरह से इन सब का फायदा उठाए।
0: अगर आपको ये यांत्रिकरण की योजना लेना हो या फिर सिंचाई की सुविधा लेना हो तो आप भूमि संरक्षण कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 8789489734, और किसी तरह की जानकारी आपको लेनी हो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं।
1: मैडम तिक्की जी, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उम्मीद है हमारे जो कृषक भाई बहन हैं आपको सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा उठाएंगे और अगर उनको ज़रूरत पड़े तो आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंचाई के लिए सरकारी योजनाएं, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी अर्चना तिर्की। किसान भाइयों, ग्रीष्म कालीन हरी खाद के लिए सनई ढैंचा की बुआई आप कर सकते हैं। सनई के बीज दर 60 से 70 और ढैंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। ग्वार, मक्का, बाजरा जैसे चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह आप कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। किसान अरहर और कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें तथा बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें।

किसान भाइयों, आने वाले दिनों में लू यानी कि गर्म हवा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। नर्सरी व वृक्षों को लू से बचाने हेतु अवरोध

उत्पादकों के उपयोग की सलाह दी जाती है। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भर कर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें, जिसमें कीटों के अंडे तथा लार्वा और अन्य बीमारियां नष्ट हो जाएं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

किसान भाइयों, आइए अब नज़र डालते हैं स्वास्थ्य की बातों पर। गर्मियों में तापमान बढ़ने और अत्यधिक पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम और यूरिक एसिड जैसे खनिज आपस में मिलकर किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। पसीना ज़्यादा निकलने और पर्याप्त पानी न पीने से किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। यूरिन गाढ़ा होने पर मिनरल्स क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं और इससे पथरी बन जाती है। डिहाइड्रेशन के दौरान ठंडी और मीठी कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन खतरे को और बढ़ा देता है। इन सब से बचने के लिए दिन भर में कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ताकि यूरिन हल्का और साफ रहे। नारियल पानी, नींबू पानी और फलों का रस अपनी डाइट में शामिल करें। ज़्यादा नमक और चीनी का सेवन किडनी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए इनसे बचें। किडनी स्टोन के कारण पीठ के निचले हिस्से या पेट में तेज दर्द, यूरिन में जलन या खून आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें।

0: नेहा सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: किसान भाइयों, चलते चलते आपको ये बता दें कि भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें तथा माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए राजेश को अनुमति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्वी क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देश को नक्सल मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से पीड़ित रहे क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए नए वैज्ञानिक प्रारूप लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत मुक्त हुए इलाकों में शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है।
3: हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की और 5 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कृषि मंत्रीगण, कृषि से संबंधित पूरे वरिष्ठ अधिकारीगण भुवनेश्वर में बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए कभी खाद्यान्न की कमी ना हो, अन्न के भंडार हम भरपूर करें और अन्न उत्पादित करने वाला किसान अन्नदाता नहीं जीवन दाता है, उसको सुखी कर पाए, उसकी आय बढ़ा पाए।
1: रांची के लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लंबित रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। CII स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिलू पारिख और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदर रमन ने दावोस आर्थिक मंच 2026 में झारखंड को मिले मजबूत निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग की इच्छा जताई। इस बीच रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्राओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पेन, स्वीडन और दावोस दौरों को कई महीने बीत चुके हैं लेकिन राज्य में एक भी कंपनी ने निवेश नहीं किया है।
4: 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल। निवेश में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वीडन और स्पेन गए, एक वर्ष बीत गए, डावोस गए भी कई महीने बीत गए, एक रुपए का निवेश है जो जमीन पर नहीं दिख रहा। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है ना उनका कोई फायदा होने वाला है।
1: उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के बाद झारखंड को एआई और डेटा साइंस का हब बनाने का दावा किया गया था, जो जमीन पर विफल रहा। भाजपा ने इन यात्राओं के परिणामों पर श्वेत पत्र की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के SIR अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई।
5: जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे है जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में। तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए और फिर उस मापदंड को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: रांची यातायात पुलिस ने पुलिस स्टूडेंट संवाद श्रृंखला के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मनन विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमित उपयोग तथा ट्रैफिक सिग्नल के पालन के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक 27 मामले दर्ज कर 63 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक कुल 706 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
7: वर्ष 2026 जनवरी से लेकर अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए जिसमें 63 प्राथमिकी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और न केवल जेल भेजा गया बल्कि इनके अनुसंधान को लगातार मेरे स्तर पर और हमारी टीम के द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है सो दैट कि इनके बेल वगैरह और इनकी डायरीज इतनी स्ट्रांग हो, प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत हो कि इनको सजा हम लोग करा पाए और ये कार्रवाई और तेजी से और मजबूती के साथ आगे जारी रहेगी।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 50.3 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा के ठेठई टांगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बोकारो, धनबाद में ऑरेंज अलर्ट जबकि रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 मई को रांची, हजारीबाग और चतरा समेत 7 जिलों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान में 22 मई से विशेष ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन होगा। रेलवे यूथ स्पोर्ट्स अकादमी के इस शिविर में बालक बालिकाओं को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सिखाई जाएगी। बीसीसीआई के सीनियर वीडियो एनालिस्ट चंद्रदेव सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों का वीडियो एनालिसिस के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्व क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे GM। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस द्वारा नक्सली एवं उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल से पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मनोज लोहरा एवं महादेव सिंह शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर एक AK-47 राइफल समेत 3 हथियार एवं गोलियां बरामद की गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस क्रम में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। उनके पास से JJMP के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और दो SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं।
1: लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में आजसू पार्टी का प्रमंडल स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि
3: हमारे युवा इकाई के लतेहार, पलामू और गढ़वा इकाई के जो प्रखंड स्तर के जो प्रभारी हैं उनके साथ आज संयुक्त एक बैठक थी और ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह था और आने वाले कार्यक्रम को किस रूप से आने वाली राजनीतिक चुनौती, इस राज्य के गठन के उद्देश्य और आगे भविष्य में हम किस रूप से संगठन को और धारदार बनाएंगे, इस संदर्भ में आज चर्चाएं हुई है।
1: लातेहार जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला प्रशासन अफीम की खेती एवं मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन सभी संदिग्ध जमीनों का सत्यापन करा रहा है जहां अफीम की खेती होती है। इसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों एवं उग्रवादियों के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समस्याओं से जुड़े 59 आवेदन भी आए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
4: नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी के अंतर्गत लातेहार जिला में कुल 51 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। आसपास के जिलों से भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम किया पिछले 4-5 दिनों में। आज इसका आखिरी चरण है जो लातेहार में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली और उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी देय लाभ हैं उनके बारे में इनको अवगत कराना।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में SIR के नाम पर वैध वोटरों का नाम काटे जाने की प्रक्रिया का विरोध किया गया। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए बूथ लेवल एजेंट एवं 10 सदस्य

0: सारा चीज को बोल करके उनका नाम काट दिया जा रहा है।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
2: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक।

0: আলো
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम गांव भर की बातें करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बोड़ाम प्रखंड के लाइलम गांव के ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह जी से। हम गाँव में आए हुए हैं और चूंकि ये डिमना जो बांध है उसके करीब हम लोग हैं। यहाँ पर दादा जोहार आपको।
2: जोहार।
1: ये बताइए, आपका जो लाइलम है जहाँ हम लोग जो वहाँ बैठे भी, लोगों से बातें भी हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई भी, कि जो बांध बना है उससे लाइलम जो गांव है, जो लाइलम का जो इलाका है, क्या कितने लोग प्रभावित इससे हुए थे?
2: उस समय परिवार का संख्या बहुत ही कम था, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा ही हो ना। अभी तो परिवार बढ़ा है।
1: कितने साल पहले की बात?
2: आपका 1942-43 का। तो उसमें बहुत कोई परिवार पश्चिम बंगाल में चले गए, कुछ इधर उधर भाग गए, या कुछ लोग यहाँ ऊपर में जाके बैठा हुआ है। लालम का कुल 412 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ था।
1: अच्छा, कुल कितना गया?
2: कुल 1861 एकड़, 12 मोजा।
1: कितने गांव? 12 मोजा।
2: 12 मोजा।
1: तो उसमें कौन कौन से गांव शामिल है?
2: आपका हो गया लालम, नौतुंडी, पुंसा, बरजपुर, गेड़ुआ, मिर्जाडी, साल दोहा, हलुदवनी, कुटी मकली, भादोडी और बोटा पगदा।
1: अच्छा, ये सारे गांव के
2: 12 मोजा
1: लोग इससे प्रभावित हुए। तो विस्थापित जो हुआ इतने बड़े पैमाने पर जल प्लावन के बाद, तो इसमें लाभ क्या मिला? मुआवजा, नौकरियां वगैरह कुछ रोजगार के लिए?
2: मुआवजा नगण्य के जैसा उस समय दिया था, नौकरी का तो दूर की बात। और डिमांड करने से तो अभी अधिकारी लोग वो टाटा के पक्ष में ही हो रहा है कि सर्किट हाउस में उसका तो रेस्टोरेंट है, उसका ही पानी बिजली का पूरा फायदा देता है ना, उसका घर में ही रहता है। और कोई कोई अधिकारी बोलते हैं कि टाटा के विरोध में निर्णय देना उतना आसान बात नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे लड़ाई लड़ना है चाहे जो भी हो। न हमारा लोग को रोजगार मिला, न सिक्योरिटी गार्ड मिला, न मछली का केज कल्चर मिला, न बोर्ड चलाने का अधिकार मिला। तो इसलिए यहाँ का लोग फिर से माओवादी जैसा हुआ था वैसा ही होगा।
1: शुरू में जब शुरुआत हुई, जब इसका सर्वेक्षण किया गया, क्या उस समय विरोध नहीं हुआ था?
2: उस समय तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन उस समय का जमाना का बात है, दादा लोग पर दादा लोग का बात है। उस समय तो वो लोग पुलिस देखने से भागते थे और गिना चुना के दूर नहीं होते थे और भी डराते थे।
1: अच्छा, इसमें सबसे जो मुख्य बात, एक गांव होता था तो एक परिवेश होता था, उसका समाज होता था, उसमें क्या क्या डूबा गांव के? मैंने घर के साथ साथ जैसे होता नहीं कि पूजा स्थल होता है, जाय स्थान है, शमशान है,
2: जैसे लालम का ही उस समय हमारे यहाँ अभी भी जहर स्थान नाम से है ना, हमारा शमशान घाटी है जहाँ हाट घाटी होता है ना, तो वो सब डूबा है। एक कोन्या डूबा बोल के जगह है, तो बहुत धर्म स्थल भी हमारे यहाँ डूबा हुआ है।
1: परंपरा छिन गई।
2: हाँ, एकदम पूरा
1: संस्कृति।
2: हाँ, संस्कृति परंपरा
1: सब तो इधर उधर बिखर
2: गया। हाँ हाँ, उस समय सारे टोले के लोग एकत्रित होकर सरहुल नाच करते थे, है ना, नाचते थे, गाते थे, पूजा वूजा करते थे। तो वैसा
1: और उस समय खेती बाड़ी होती थी, रोजगार भी थी ना।
2: हाँ,
1: महुआ का पेड़ जैसे।
2: हाँ, बहुत बहुत ज्यादा महुआ पेड़ थे
1: भाई, सब तो जल प्लावित
2: हो गया। कुसुम पेड़ थे आपका, भुरजू भुरजू
1: लाह और महुआ। हाँ, ये सब बहुत रोजगार का अच्छा साधन होता है।
2: केंदु पत्ता।
1: हाँ, ये सब।
2: हाँ, बहुत ज्यादा था।
1: कुल मिला के ये कहा जाए कि इसे नुकसान हुआ है यहाँ के लोगों,
2: बहुत ज्यादा,
1: लेकिन उस हिसाब से
2: टाटा कहीं ना कहीं दूसरों के नाम से, जिसका जमीन अधिग्रहण हुआ नहीं, उनके कुछ गया नहीं, वहाँ टाटा फाउंडेशन के द्वारा बड़े बड़े विकास का बात करते हैं, किंतु धरातल में जिस लोग का जमीन गया है, वो लोग जो अभी उसके वंशज है, वो लोग के लिए तो कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है कि भाई

0: मिडिल स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, यहाँ एक हॉस्पिटल खोल देंगे,
1: जी
0: या तो वो विस्थापित के वंशज जो है उसको TMH में कुछ 4 ठो 5 ठो बेड रिजर्व रखेंगे, ऐसा अभी तक नहीं
1: कुछ
0: हुआ,
1: नहीं हुआ।
0: कुछ नहीं हुआ।
1: नहीं, धीरे धीरे ऐसा भी हुआ होगा ना, हमेशा आंदोलन की धार कमजोर कब होती है, जब गांव के लोग भी कुछ कुछ शामिल हो जाते हैं ना।
0: हाँ, दलाल टाइप का तो लोग हर गांव में हर जगह पर होते हैं ना।
1: और इसी तरीके से क्या वो लोगों को बांट के
0: टाटा
1: आंदोलन।
0: टाटा अपने खुद ही करता है, यहाँ 2 4 लड़का को शिक्षित नौजवान लड़कों को कुछ कुछ कम देती है, 18-20 हज़ार रुपया देके, और हमारा जो मूवमेंट है उसको पहुंचाना है उसको।
1: क्या क्या हो रहा है,
0: हाँ
1: लफड़ा
0: हाँ
1: हुआ है,
0: हाँ
1: मैंने एक तरह से वो खुफिया ये
0: हाँ
1: तरीके
0: खुफिया
1: से
0: विभाग, हाँ खुफिया विभाग,
1: जानकारी लेते रहना कि गांव में क्या कुछ हलचल हो रही है।
0: हाँ
1: अच्छा, बाकी सब बुनियादी चीजें हैं, जैसे अभी आप लोग जहाँ बसे हैं, ये जो जगह है आपका गांव का, हाट को लाइए यहाँ से लेके अंदर, स्कूल वगैरह सब सब कुछ अभी है वहाँ पे गांव में,
0: टाटा
1: सरकारी
0: के, हाँ
1: योजनाएं मिल का लाभ मिल रही
0: नहीं
1: है।
0: सरकार के योजना से बना है, वही जब से झारखंड सरकार बनी है, जैसे दुलाल भुइयां से लेकर मेरे वाचू के विधायक
1: रामचंद्र
0: रामचंद्र सहीस के लेकर मंगलकालीन तक, उतना ही से बना है, उसके पहले कुछ नहीं बना था।
1: नहीं बना था, तो ये स्कूल भवन और उसके
0: हाँ
1: बाद स्वास्थ्य केंद्र,
0: शास्त्र,
1: आंगनबाड़ी,
0: हाँ
1: ये सब कुछ अभी चल रहे हैं क्या ठीक ठाक?
0: हाँ मोटा मोटी चल रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र
1: ओ, चल रहा है
0: जैसा
1: वो सब
0: चलता है,
1: जैसा चलता है।
0: हाँ वैसे ही
1: अच्छा,
0: चलता
1: राशन पानी जो दिया जाता है वो भी
0: है। राशन
1: PDS का?
0: राशन चाली PDS वाला तो मिल ही रहा है, लेकिन वैसे हम तो बोले एक बात में
1: हाँ,
0: सरकारी
1: उसी
0: तंत्र
1: तरीके
0: जैसे,
1: से
0: हाँ
1: मतलब जो थोड़ा तेज तर्रार है तो
0: हाँ
1: अपना वसूल कर लेता है, ले
0: हाँ
1: लेता है, लेकिन
0: गरीबी
1: जो हाँ
0: गुरपाली जो नहीं बोल पाता
1: गरीब,
0: है,
1: जैसे पेंशन,
0: हाँ
1: बहुत सारे वृद्ध लोग होंगे या
0: हाँ
1: विधवा है
0: हाँ
1: या सामाजिक सुरक्षा पेंशन,
0: हाँ
1: इनका भी लाभ हर
0: बहुत सारे
1: परिवार में।
0: लोग को तो, बहुत सारे लोग को, विधवा लोग को 4 5 साल से पेंशन बंद हो गया है,
1: हाँ
0: बोलते बोलते हम थक गए। सचिव को बोले तो बोला सनत सेवा के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है,
1: हाँ
0: तो बोला हम दादा 4 महीना पहले इसको बोल के भेजा है, लेकिन बनने में 4 5 महीना समय लगेगा, इसे बोलते हैं।
1: अच्छा, तो
0: तो
1: ये जो आपका जो लाइलम है गांव, इसमें कितने वार्ड हैं
0: चार
1: टोटल?
0: बॉर्डर,
1: 4 वार्ड हैं, तो 4 वार्ड में कुल कितने लोग होंगे, माने आबादी क्या होगी
0: आबादी 1800-1700 जैसा
1: ऐसे होंगे, और उसमें कौन कौन समुदाय जाति समुदाय के? अच्छा,
0: आपका ज्यादा है, सांताल और भूमिज
1: ज्यादा संख्या में,
0: कुछ कमार है, कुछ महत्व है, बहुत थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा है। तो एक चीज है, गांव में जो एक समाज होता है, मतलब कहते हैं ना मिलजुल के
0: हाँ
1: रहना,
0: हाँ
1: शादी ब्याह पर्व
0: हाँ
1: त्योहार, तो वो गांव में वो प्रेम सद्भाव दिखता है,
0: दिखता है,
1: मैंने मिलजुल के
0: मिल
1: रहना।
0: जुल, मतलब मेरी बेटी की शादी देंगे तो लोग को बुलाएंगे तो लोग आएंगे,
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ
0: वो लोग बुलाएंगे तो हम जाएंगे, वैसा है। जैसे सरहुल में हमारा जो गांव का चंदा होगा वो लोग भी देंगे, वहाँ भाग लेंगे, पूजा वूजा कराएंगे, वैसा है कुछ
1: यही
0: कुछ।
1: होता है ना कि
0: हाँ
1: जो खास करके जो राजनीतिक पटल पे ये
0: हाँ
1: सब चीजें बहुत सारी उड़ाई जाती है बातें, कि आपस में जो लोग हैं समुदाय के लोगों को का जो प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने की कोशिश होती है।
0: कहीं कहीं आया है उधर वाला बोड़ा तरफ काम बात कर रहे हैं, वो CNT एक पर जमी दखल बेदखल खरी वाला, वैसे कहीं कहीं हुआ, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज्यादा वैसा नहीं हुआ, CNT टेवलगन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, जो कि है टाटा ने किया है, अब कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो हुआ है, वो सरकारी जमीन हुआ है।
1: तो अभी मूल रूप से यहाँ लैलम में रोजगार का क्या मुख्य जरिया है?
0: देखिए यहाँ का तो सबले बड़ा साधन है, 4 6 महीना का तो खेती सबका ही हो जाता है
1: अभी बारिश के समय
0: बारिश
1: खरीफ
0: में।
1: का
0: हाँ
1: धान।
0: हाँ धान, और कुछ कुछ भाई लोग तो सब्जी वब्जी उगा लेता है, बेचता है, कुछ कुछ भाई लोग मजदूरी के लिए जमशेदपुर जा ही रहे हैं, है ना, और कुछ कुछ भाई लोग यहाँ जो कुशल मजदूर है और कुशल मजदूर है यहाँ काम कर रहा है, ऐसे ही कोई किसान मजदूर है, ऐसा भी है।
1: जैसे तैसे मतलब अपने आप को
0: हाँ
1: सरवाइव करने का जो तरीका है लोगों ने
0: हाँ
1: ढूंढा है,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिला नहीं,
0: नहीं
1: और मिलना चाहिए था, जो न्याय उनके साथ होना चाहिए वो नहीं
0: वो
1: हुआ,
0: नहीं हो
1: जैसा
0: पाया
1: कि
0: है,
1: आप बता रहे हैं, है ना, यहाँ से
0: हम
1: चले
0: नहीं
1: गए।
0: बता
1: हाँ
0: रहे हैं, प्रशासन भी बताएंगे।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: कि ये स्थिति है।
0: हाँ
1: एक होता है ना कि जब अपने साथ कोई अन्याय होता है तो उसके लिए लोग विरोध करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, लेकिन वो जागरूकता लोगों में होने के बाद भी क्यों, जब न्याय के लिए जब लड़ाई होती
0: वो
1: है, लड़ नहीं
0: ज्यादा
1: पाते?
0: नहीं, कुछ कुछ चीजों पर आदमी निकलता है, लेकिन ज्यादा दिन मतलब पैसा देके जाना आना खाना वो तो संभव नहीं है।
1: हाँ, अपना जो
0: हाँ
1: ऑफिस में के चक्कर
0: हाँ
1: लगाना, बार बार आवेदन देना, ज्ञापन देना कि हमारी ये मांग है इसको पूरी
0: और
1: करो।
0: हमारे यहाँ तो राजनीति पार्टी कोई उसके लिए इन्वॉल्व नहीं है कि भाई गाड़ी का पैसा देगा वो लोग, हम लोग जाएंगे उसका नारा लगाएंगे, ऐसे तो ही नहीं।
1: नहीं, एक चीज है, रास्ता जो है

0: कुछ कुछ जगह में मुझे ठीक लगा कि ठीक ठाक है, लेकिन बाकी इधर से जब आए रास्ता खराब है।
1: 60 डिग्री जब आए,
0: हाँ जब आए तो रास्ता खराब है। सुने कि कई दो जगह तीन जगह पुल बनना था, सो कागज में बन गया। जैसे अभी हम कुशंकर जी बता रहे थे कि पुल जब पता लगा रहे हैं तो वहाँ पता चला कि नहीं वो तो बन गया है, जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। तो ये भी एक है बड़ी समस्या ना, जो पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा ही से सब कुछ होता है ना।
1: फिर भी कुछ हुआ है नहीं तो आने वाले दिन में, पिछले आपको 15 साल पहले के छाटू गिराना ही बरसात के समय बहुत मुश्किल था, साइकिल लेके नहीं आ सकते थे। ऐसा थे
0: मैंने, अभी तो खैर जैसे तैसे करके लोग आ ही रहे हैं। अच्छा ये नहर का जो है, नहर के पानी का कुछ लोगों को फायदा मिलता है?
1: यहाँ का पानी का तो किसी का फायदा नहीं मिलता है। नीचे तरफ में कोई कोई तो मशीन से उतर रहे, ऊपर तरफ कुछ नहीं। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना था, क्या नाम था,
0: राज्य सरकार का
1: नहीं
0: या कोई संस्था?
1: नहीं, केंद्र सरकार का।
0: केंद्र का, अच्छा।
1: आपका मैंने
0: किसानों के लिए,
1: किसान को लिए पाइप भी गड़ा है। अच्छा। लेकिन मशीन बैठा नहीं।
0: ओ,
1: घर बना है, पाइप गड़ा है।
0: अच्छा, वहाँ से जल उठाने के लिए पानी?
1: हाँ,
0: खेती के लिए।
1: खेती के लिए,
0: तो लेकिन वो रह गया ऐसे पेंडिंग।
1: पेंडिंग, घर भी बना है
0: और फिर बाद में कोई आए नहीं अधिकारी लोग?
1: नहीं,
0: मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने हमको लगता है कि लाखों करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद फिर वही का वही रहा। तो क्या आप आगे के लिए सोचते हैं? आप एक प्रधान हैं तो जरूर समाज के बारे में सोचते हैं, न्याय अन्याय की बातें होती है, तो आगे आने वाले समय के लिए जो अगला जेनरेशन है हमारी, जो नई पीढ़ी है, युवा है, क्या रास्ता अपनाएं ताकि लोगों को न्याय मिले और एक खुशहाल एक गांव दिखे? तो हाँ चलो भाई, यहाँ गाँव आए तो लगे।
1: देखिए, जो यहाँ का मध्यवर्ती आबादी है वही कर सकता है। अभी का जेनरेशन जैसा है, जैसे बच्चे लोग कितना भी पढ़ाई लिखाई कराए लेकिन टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, वो लोग अपना भविष्य भी नहीं तय कर पा रहे हैं। यहाँ का जो मध्यवर्ती किसान है वो लोग तो अपने बच्चा को भाई खेती में 1-2 घंटा लगा सकते हैं, जी थोड़ा हाल भी जुता रहे हैं और स्कूल भी कॉलेज भी भेज रहे हैं। लेकिन कोई लोग ऐसा भी है कि अल्प विद्या भयंकर हो गया है, छाड़ो ना बोलवे के छना गिला तो बोलवे खाचे जाचे वो चेहरा तो बोलवे की।
0: ये भी है, हाँ। एक हमको लगता है कि गहन चिंतन और मनन का विषय है। आने वाले समय में यही उम्मीद करें कि कुछ यहाँ अच्छा होगा, सरकार की नजर पड़ेगी, यहाँ के जो भी लोग हैं, हाँ। जिनके साथ जो भी अन्याय हुआ है या अन्याय हो रहा है, हाँ। वो रुकेगा और जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, वो आने वाले समय में मिलेगा। प्रधान जी, आपसे बड़ी अच्छी बात है, आपने अपना यहाँ के लोगों का दर्द बांटा, साझा किया, जो समस्याएं उनके बारे में भी बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे लैलम गांव के प्रधान देवेन सिंह जी से, जो लैलम गांव के साथ साथ यहाँ दिमना बांध और उससे प्रभावित लोगों के दुख दर्द के बारे में बातें जो है वो साझा कर रहे थे। कार्यक्रम आलोक का आज का ये अंक बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित था। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता राकेश रमन, ध्वनि अंकन और वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
2: आलोक। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट

0: कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कच्चे धागे। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है नुसरत फतेह अली खान ने, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं।

श्रवण ने फिल्म थी सात रंग के सपने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम ग्रंथ से। आवाजें विनोद राठौड़ अलका याग्निक की हैं, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के

0: ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अलका याग्निक और नलिन दवे की आवाजों में। लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम का ये गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा गीत। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है गुलामी।

गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक। चमत्कार फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous training.

0: Manthan.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में और 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
1: जी।
2: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पे सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
2: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपनी उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी
1: जी।
2: इसका फायदा क्या है और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
0: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी, और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके एक

0: कि आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
2: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
1: आसानी होती है।
2: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या है जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
2: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
1: जी।
2: अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं। उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
2: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का 2 बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा

0: लेते हैं तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का
1: जी।
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहाँ पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे। तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास है, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दे। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है।
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते हैं तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता
1: है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं, अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं। और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला, वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की है। बोल हैं समीर के, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

राजा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। शब्द रचना थी समीर की, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। फिल्म है जीत। आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

खामोशी द म्यूज़िकल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी की, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। अब लीजिए सुनिए फिल्म इम्तिहान का गीत, जिसे लिखा है फैज़ अनवर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाज़ कुमार सानू की है।

फिल्म अमृत का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की थीं। बोल थे आनंद बख्शी के, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूध का कर्ज, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक।

फूल और कांटे इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

फूल और कांटे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

0: कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions.

FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शिवरात्रि, जय हिंद।